सुप्रभात। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 25, तदनुसार 15 जून ईस्वी सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं।

चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह और साथी। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्तिमय गीत।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ओम व्यास के स्वर में ये भक्तिमय गीत। अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और साथियों के स्वरों में ये रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप आनंद ले सकेंगे कुमारी ज्योति के स्वर में भजनों और गीतों का। सवेरे 7 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। सवेरे 8 समाचार प्रभात का प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे सवेरे 8:15 पर। उसके बाद आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा सवेरे 8:30 पर। हमारे केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक होगा सवेरे 8:40 पर, जिसमें आज आपका मनोरंजन करवाएंगे उरांव लोकगीत से शुक्रा भगत और साथियों के स्वरों में। सवेरे 9 सुनिएगा जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम विविधा। सवेरे 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। दिन के 10 सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं दिन के 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण, जहां से आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:10 पर। यहीं से सुनेगा अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण दोपहर 1:20 पर। पुनः सुनेगा प्रादेशिक समाचार दिन के 2:55 पर। दिन के 3 से आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम 4 मुख्य समाचार सुनिएगा, उसके बाद शाम 4:02 से आकाशवाणी रांची के अन्य कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। शाम 5 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। हमारे केंद्र से शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक द्वारा गाए गए फिल्मी गाने। शाम 5:30 पर आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। मनोरंजन कीजिएगा हो लोकगीत से बाबूराम सोय और साथियों के स्वरों में। आज की भेंटवार्ता का विषय होगा व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन करने वाले किसान। भेंटवार्ताकार होंगे संयोग बानरा। साथ ही मनोरंजन कीजिएगा पंच परगनिया लोकगीत से प्रेमनाथ कुमार और साथियों के स्वरों में। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं शाम 6 सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से, उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा, जिसमें आज जानकारी प्राप्त कीजिएगा स्वतंत्रता का अधिकार विषय पर। साथ ही आपका मनोरंजन करवाएंगे मिलानी बोदरा और साथियों के स्वरों में एक बह गीत से। और साथ ही आप एक आंधी गीत का आनंद भी ले सकेंगे शकुंतला जामुदा और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं शाम 6:30 पर सुनिएगा युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 7 प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से, यहीं से ज़िले में आजकल का माफ़ कीजिएगा शाम 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। श्रोताओं उसके बाद शाम 7:10 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला सरकार के 12, विषय होगा विदेश नीति। श्रोताओं शाम 7:45 पर सुनिएगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 8 सुनिएगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा समाचार संध्या का प्रसारण, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। रात्रि 10 हमारे केंद्र से सुनिएगा गज़लों का प्रोग्राम महफिल। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं कुमारी ज्योति के स्वर में संगीत रचनाओं का। सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे कुमारी ज्योति के स्वर में संगीत रचनाओं का। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

नमस्कार जोहार जोहार चायवासा कार्यक्रम में मैं उदयपान आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, बिना कोई विलंब के ये सुनते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का पहला गीत, जो हमने लिया है फिल्म आराधना से। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

फिल्म आराधना का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अगला गीत आइए सुनते हैं। ये सुदास की आवाज़ में, फिल्म का नाम है ससुराल।

श्रोताओं, ये था येसुदास की आवाज़ में फिल्म ससुराल का गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है धरती।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म धरती का ये गीत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

आए दिन बहार के। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं फिल्म विश्वास का गीत मुकेश और हेमलता की आवाज़ों में।

0: मुकेश और हेमलता की आवाज़ों में ये था फिल्म विश्वास का गीत। श्रोता, उम्मीद है आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। और अब वक्त है एक ज़रूरी संदेश का।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जोहार चायबासा में। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, वो गीत हमने लिया है फिल्म सौदागर से। आवाज़ है आशा भोसले की।

सौदागर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ज्वेल थीफ का ये गीत।

श्रोताओं, ये था ज्वेल थी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

0: श्रोताओं, ये था मुकेश और कंचन की आवाज़ों में फिल्म धर्मात्मा का गीत। और अब आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलो राय को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी गाँव बारे भक्तो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात होते अखन बात हो जा है।
6: नितुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना है यापा में रियो तपा में रियो वा बेटा निका
7: अन्या नितुम दो मुंबई कोड़ा
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। और अब आइए सुनते हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। जी हाँ, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म प्यासा का ये गीत।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त के युगल स्वरों में ये था फिल्म प्यासा का गीत। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मुनीम जी का ये गीत है।

और अब श्रोताओं, ये बात करते हैं उनकी जिनकी बदौलत हमारा देश सुरक्षित है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के वीर जवानों की, जो गर्मी, बरसात, ठंड या किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ताकि हमारा देश और हम सब देशवासी सुरक्षित रहें। श्रोताओं, हमें अपने देश के सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए कि किस तरह अपना सर्वस्व बलिदान देकर भी उन्होंने देश की सेवा की है और प्रतिक्षण देश की सेवा में जो है सेवा कर रहे हैं। श्रोताओं, हमारे इन सैनिकों को हमारा कोटि कोटि नमन। और अब आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है हकीकत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
9: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये

0: मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट

0: मार्गों पर सर्विस रोड से लगे करीब 40 किलोमीटर क्षेत्र में साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, ग्रीन वर्ज, सोलर रूफ और सोलर लाइटिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग डीपीआर तैयार कर रहा है। सरायकेला खरसावा जिले के टाउन हॉल में कल आजसू पार्टी की ओर से कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड के भविष्य निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग पाने वाले उत्पादों में भगाया सिल्क एवं फैब्रिक, कुचाई सिल्क, केसरिया कलाकंद, डोकरा शिल्प, दुमका चंदर, बड़ोनी पपेट्स, मुंडा आभूषण, झारखंड बांस शिल्प, तसर सिल्क और साड़ियां, जादोपटिया चित्रकला और पांची साड़ी तथा फैब्रिक्स शामिल हैं। जीआई टैग से विलुप्त होती लोक कलाओं को नया जीवन मिलेगा और कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बाजार मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यभर में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। राजधानी रांची में 1 से 19 वर्ष तक के 4,84,000 से अधिक बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 जून को छूटे हुए बच्चों के लिए मॉपअप दिवस मनाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनिवार्य रूप से दवा दिलवाएं। गंभीर रूप से बीमार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को यह दवा नहीं दी जाएगी।
1: इस अभियान के तहत जिले के 4,84,435 बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के दौरान 1 वर्ष से 19 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी।
0: झारखंड में मॉनसून शुरू होने के साथ ही कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
2: बीज का जो वितरण है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से होगा और ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी किसान जब बीज का लिफ्टिंग करता है तो ये सुनिश्चित करे कि वो अपने खेतों में बुआई करे, उसको खुले मार्केट में बेच न दे। जो भी बुआई करे उसका जियो टैगिंग करने का भी डायरेक्शन दिया गया है कि आप जाके देखिए कि किसान ने वास्तव में लगाया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितनी जोत है किसान की उस जोत के अनुरूप ही बीज उसको देना है, जोत से ज़्यादा बीज नहीं लेना है।
0: मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 20 जून तक गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में झारखंड T20 क्रिकेट लीग का उत्साह चरम पर है। हमारे रांची संवाददाता ने बताया है कि चौथे दिन कल कोयलांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स ने अपने अपने मुकाबले जीते।
3: राजधानी रांची का जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट के रोमांच और खेल प्रेमियों के उत्साह से सराबोर है। कल खेले गए मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने सनराइज रांची टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। सनराइज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 82 रन बनाए। कोयलांचल सुपर किंग्स ने 11 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं दूसरे मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 8 विकेट से पराजित कर दिया। संथाल स्ट्राइकर्स की टीम ने 168 रन बनाए जिसके जवाब में छोटा नागपुर ने 169 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार रांची।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से

प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राजीव रंजन के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने और नए महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय की नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत और फ्रांस बना सकते हैं एआई का ओपन सोर्स मॉडल। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को एकजुट रखने के लिए डिनर डिप्लोमेसी। प्रभात खबर ने T20 महिला विश्व कप मुकाबले को लेकर लिखा है, दीप्ति पंजे के आगे पाकिस्तान का सरेंडर। हिंदुस्तान ने लिखा, कोविड के बाद 3 साल में 6 करोड़ मधुमेह रोगी बढ़ने की खबर, हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहिताश्य रॉय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया। राजीव रंजन के इस्तीफे के बाद भाजपा और झामुमो आमने सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से डीवीसी कमांड क्षेत्र के जिलों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का किया आग्रह। झारखंड के पारंपरिक उत्पाद भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क और डोकरा शिल्प समेत 11 विशिष्ट उत्पादों को मिला GI टैग। उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार। राज्यभर में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा। और JSC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए JPL T20 मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स ने जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:44 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं उरांव लोकगीतों का। कलाकार है शुक्रा भगत और साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक में आज आप आनंद ले रहे हैं। उरांव लोकगीतों का कलाकार हैं शुक्रा भगत और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे उरांव लोकगीतों का कलाकार थे शुक्रा भगत और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। उम्मीद है श्रोताओं, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हम किसी न किसी चर्चा के विषय को लेकर करते हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे विश्व पवन दिवस के बारे में। तो आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। विश्व पवन दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड विंड डे भी कहा जाता है। यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ ने 2007 में इस दिवस को पहली बार मनाया। बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सहयोग से इसे अलग अलग आयोजनों के माध्यम से विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। दोनों संगठनों द्वारा यह तय किया गया कि विश्व भर में इस दिन पवन ऊर्जा के महत्व से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इस दिन पवन ऊर्जा को दैनिक जीवन में उपयोग करने, वातावरण से कार्बन की मात्रा को कम करने और विश्व भर में पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोगों को पवन ऊर्जा के इस्तेमाल और इसके द्वारा मिलने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। विश्व पवन दिवस पवन ऊर्जा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन विश्व भर में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से प्राकृतिक ऊर्जा का इस रूप के महत्व को समझाया जाता है और साथ ही पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पवन ऊर्जा की शक्ति, इसके विभिन्न उपयोगों और दुनिया को स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ले जाने की संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हर साल इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि पवन दिवस के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। श्रोताओं, बढ़ती आबादी के चलते भारत ने भी अक्षय ऊर्जा के महत्व को समझा है। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान तमिलनाडु का है। भारत में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों की कुल उत्पादक क्षमता 40 गीगावाट के करीब है। तो श्रोताओं, अभी हम चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे विश्व पवन दिवस के बारे में। इस जानकारी के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए अब हम आनंद लेते हैं इस गीत से।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म खेल खेल के इस गीत से। इस गीत के बाद आइए अब हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे योग के बारे में।

0: आज हमारे साथ हैं योग की एक प्रशिक्षिका। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार।
1: जोहार।
0: तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: मेरा नाम है रश्मि सिंह, मैं योग प्रशिक्षिका हूँ। अभी मैं आशा किरण मुखोपाध्याय विद्यालय में कार्यरत हूँ। योग के क्षेत्र में मैं नेशनल योगा प्लेयर हूँ और साथ ही नेशनल योगा रेफरी भी रह चुकी हूँ।
0: जी बहुत बहुत बधाई रश्मि जी कि आपने इतनी उपलब्धि प्राप्त की हुई है, और बहुत अच्छी बात है कि आप आज के समय में एक नेशनल योगा प्लेयर हैं और नेशनल योगा रेफरी भी आप रह चुकी हैं। ये बहुत गर्व की बात है।
1: धन्यवाद।
0: तो रश्मि जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि आप योग की प्रशिक्षिका हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि योगा क्या है।
1: योगा एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है। योग को युज धातु से लिया गया है। जैसे कि अभी हम लोग जानेंगे, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देता है। इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, और यह शारीरिक, मन और आत्मा को संतुलित करने का एक अच्छा तरीका है।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो रश्मि जी, योग के कितने प्रकार हैं?
1: योग के कहे गए तो चार प्रकार हैं, लेकिन योग के पांच प्रकार हैं।
0: जी,
1: जैसे हट योग, यह योग का लोकप्रिय रूप है जिसमें शारीरिक आसन और श्वास नियंत्रण शामिल है। दूसरा राजयोग, प्राचीन रूप से राजयोग जो मानसिक नियंत्रण और आध्यात्मिक ध्यान पर केंद्रित है। तीसरा कर्मयोग, यह कर्म के माध्यम से आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। चौथा भक्ति योग, यह भक्ति और प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। पांचवा ज्ञान योग, यह ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक विकास मार्ग है।
0: जी बहुत अच्छी बातें कही आपने। तो हम जानना चाहेंगे इसमें से कौन से योग को हम नियमित रूप से कर सकते हैं।
1: इसमें से हम सूर्य नमस्कार को नियमित कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम से स्थूल व्यायाम में जाना है। तो सूक्ष्म व्यायाम पहले शारीरिक अभ्यास को करना है, फिर स्थूल व्यायाम तक जाना है। तो आसनों के नाम जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, भुजंगासन और ढेर सारे आपके शरीर की जो श्वास है, श्वास जिसे आप शुद्धिकरण कहते हैं, श्वासों के आयाम, तो उसे कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम हम लोग कैसे करेंगे? तो प्राणायाम श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। तो नाड़ी शोधन, इससे आपके श्वास की शुद्धिकरण होती है। भस्त्रिका प्राणायाम, आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है उसमें। कपाल भाती, आपके हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स इस पे बहुत सुचारू रूप से कार्य करते हैं। अनुलोम विलोम, इस तरह से श्वसन पद्धति है जो हमें नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए सभी को।
0: जी बहुत बढ़िया। तो योगा करना हमारे लिए क्यों जरूरी है?
1: योगा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा पूछा आपने। तो क्यों जरूरी है? यह शारीरिक और मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह तनाव कम करने, लचीलापन बढ़ाने, ताकत बढ़ाने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है।
0: जी,
1: इसके अतिरिक्त योग हृदय स्वास्थ्य, पाचन और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायक है। जैसे मानसिक तनाव कम करने में मदद करता है। एवं हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करता है। शारीरिक जो मनुष्य की शारीरिक कार्य करने की अवधि है उसमें लचीलापन को बढ़ाता है और ताकत भी बढ़ाता है। एकाग्रता बढ़ाने और स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है योग।
0: जी बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी बातें कही आपने रश्मि जी। तो योग करना हमारे लिए इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो रश्मि जी, बच्चों के लिए योग क्यों ज़रूरी है?
1: हाँ, बच्चों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चे अनुशासित रूप से अनुशासित मार्ग में चलते हैं और सक्षम होते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। योग बच्चों को स्वस्थ रहने, एकाग्रता बढ़ाने, तनाव कम करने में मदद करता है। एकाग्रता बढ़ते ही उनकी पढ़ाई में भी रुचि बढ़ जाती है और साथ ही उनकी जिज्ञासा जिसमें है, जो उनके हॉबीज हैं, शौक है, उसमें भी एकाग्रता आ जाती है। ये योग का बहुत ही रामबाण जड़ है।
0: जी बहुत अच्छी बात कही आपने रश्मि जी, क्योंकि बच्चों को योग करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल हम देखते हैं कि प्रायः अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये जो अभी आपने कहा, योग बहुत अच्छा तरीका है उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनकी जो एकाग्रता है उसको बढ़ाने के लिए। और ये इसके साथ ही बच्चे जो हैं आजकल पढ़ाई का जो बोझ बहुत ज़्यादा स्कूलों में दिया गया है, तो उनसे जो क्या है बच्चों में तनाव भी बहुत आने लगा है। और ये जैसा अभी आपने कहा कि इससे बच्चे तनाव मुक्त हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सभी माता पिता को अपने बच्चों को जो है ना योगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ज़रूर प्रेरित करना चाहिए, योगा सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों की जो योगा करने की जो उम्र होती है वो सही उम्र क्या है रश्मि जी?
1: वैसे देखा जाए तो बच्चों के लिए 4 से 5 साल की उम्र से बच्चों को योग सीखना जरूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन सही वर्ष उनका होना चाहिए 8 वर्ष।
0: तो रश्मि जी 8 वर्ष ही क्यों?
1: 8 वर्ष इसलिए कि बच्चों को नियमित रूप से 8 वर्ष इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनकी जो क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, 4 से 5 साल की आयु बहुत कम है, इसलिए 8 वर्ष से वो थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं, तभी उनको योग सीखने का लाभ करना चाहिए।
0: अच्छा, मतलब इससे पहले हम नहीं कर सकते हैं। इनका जो सही उम्र है 8 वर्ष ही सही उम्र है।
1: हाँ।
0: तो इस उम्र से कोई भी बच्चे योगा सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो रश्मि जी, बच्चों को, छोटे बच्चों को योगा हम नियमित रूप से कितने घंटे तक हम करवा सकते हैं?
1: तो बच्चों को नियमित रूप से योगा आधा घंटा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा करा सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को लगभग 3 घंटा योगाभ्यास करना चाहिए।
0: तो आधा घंटा ही क्यों हम करवाते हैं छोटे बच्चों को?
1: क्योंकि छोटे बच्चों की जो शारीरिक क्षमता, सीखने की क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए उन्हें आधा घंटा या एक घंटा योगाभ्यास करना चाहिए। और बड़े बच्चों की शारीरिक क्षमता अधिक होती है, तो उसको देखते हुए वह योगासना अभ्यास 3 घंटा तक कर सकते हैं। और साथ ही उनके आहार खान पान का खास ध्यान रखते हुए उन्हें नियंत्रित मात्रा में भोजन का आहार ग्रहण करवाना चाहिए, ये अति आवश्यक है।
0: जी, तो बच्चे की क्षमता के अनुसार ही हम समय बांधते हैं कि उनको कितना देरी योगा कराना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: मैंने बच्चे की क्षमता के अनुसार,
1: बच्चे की क्षमता, जो जिस बच्चे में, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, तो सब बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो वो उनका क्षमता जितना है उसी के अनुसार उन्हें अभ्यास करना चाहिए और योग शिक्षक के माध्यम से होना चाहिए उनका देखरेख।
0: जी, बहुत अच्छा। तो रश्मि जी, योग से हम बहुत प्रकार के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अगर हम स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो इसमें हम क्या क्या स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं योगा के द्वारा, थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बताएं।
1: तो योगा के द्वारा स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, जैसे हम कहते हैं योगासनों का अभ्यास करने से हमारे शरीर में लचीलापन का विकास होता है, मानसिक जो तनाव है वो कम होती है, साथ ही नसों को आराम मिलता है और मन शांत होता है। आसन मांसपेशियों, जोड़ों, त्वचा और पूरे शारीरिक ग्रंथियों, आंतरिक अंगों, हड्डियों, श्वसन और मानसिक को प्रभावित करते हैं। योग के भौतिक निर्माण खंड आसन और सांस हैं।
0: जी,
1: जैसा कि हमने पहले भी कहा था, योगा अभ्यास से मनुष्य की शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस करता है।
0: जी,
1: तो इस तरह स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। योगासन मांसपेशियों, नसों, जोड़ों, त्वचा और पूरे शारीरिक अंगों की मालिश करता है। और योग का मूल मंत्र है स्थिरम सुखम आसनम। तो आप जिस आसन में स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, उस अवस्था में बैठ करके आपको ध्यान प्राणायाम करना अति आवश्यक है।
0: जी, तो यानी कि योग से हम अपने जो शरीर के अंदर की जो भी ग्रंथियां हैं उनकी हम मालिश कर सकते हैं, जैसा भी आपने कहा। तो इसलिए योग सभी को करना चाहिए और योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ जरूर लेना चाहिए।

वो क्यों जरूरी है विषय पर और इस विषय पर जानकारी दे रही थी रश्मि सिंह को। तो श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ ही आज का हमारा विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और कुमार शानू की आवाज़ों में फिल्म बलमा के इस गीत से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, कुमार शानू और साथियों की आवाज़ों में फिल्म बलमा का ये गीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान

0: बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म 10 का ये गीत है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और भाई सुनते हैं SP बालासुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म साजन का ये गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन, और भाई सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म करण अर्जुन का ये गीत।

और अब श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में मैं हूं ना फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
1: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहली जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
1: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
1: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता।

0: ऐसा क्यों?
1: श्रोताओ, हमारा IVRS नंबर है 8800-440-559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर,
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।
2: हाहाहा

0: वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे! ओह!
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो...
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
6: अप्पू!
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?

0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अब्बू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू, क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी नोटिस है।
1: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
2: ओए।
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
2: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलू तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
4: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
4: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
4: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
4: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण।
8: किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
9: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, मोराबादी ग्राउंड रांची, 16 से 18 जून।
8: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
10: आओ साथ चलें, ये कार्यक्रम अभी हम सुन रहे थे। भेंट करता थे सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का। और अब इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी रांची से आइए सुने जोहार रांची का एक नया अंक। आज इस नया अंक के साथ मैं ऋतुश्री
1: जोहार
0: साथियों, नमस्कार, मैं आपको भी और जोहार।

0: और हिमांशु, अब आज के कार्यक्रम में हम एक सुविचार बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मन हमारा मित्र बन सके इसके लिए जरूरत है इसे समझने की। मन का स्वभाव है बहुत सोचना विचारना। हम पूरे दिन इंद्रियों के माध्यम से जो भी ग्रहण करते हैं वो हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु, मनुष्य का मन शांत करना बहुत ही कठिन है क्योंकि एक के बाद एक मन में विषय का चिंतन चलता ही रहता है और विचारों की बाढ़ सी आती रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इन विषय रूपी लहरों के उठते ही मनुष्य क्या करने की सोचता है, उसे लगता है कि शायद थोड़ा घुमाएंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा सोच वह एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है लेकिन जब लौटता है तब भी मन असंतुष्ट और परेशान ही रहता है। ऐसा क्यों?
1: क्योंकि मन यदि अपने आप में अपने आप से खुश नहीं है तो आप भले ही कहीं भी चले जाओ वह खुश नहीं हो पाएगा। हमें लगता है सुख कहीं बाहर है, हम यह वस्तु प्राप्त कर लेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा, हम इस जगह चले जाएंगे तो मन खुश होगा। पर मन दो पल के लिए खुश होता है फिर वापस उन्हीं विचारों में खो जाता है जिनसे दूर भाग रहा था। यदि आपका मन शांत है तो आप जहां हैं वहीं संतुष्टि है।
0: बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही।
1: और इसी बात के साथ एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं राहत वाली खबर की।
2: बिल्कुल, मैं समझ गई आप बातें करेंगे मॉनसून ने जो रफ्तार पकड़ी है उसके बारे में।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा है। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक बारिश 46.4 मिलीमीटर तिलैया डीवीसी में दर्ज की गई। इसके अलावा चंदवा में 45.2 मिलीमीटर तथा कांके रांची में 42.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन में मॉनसून झारखंड के शेष हिस्सों में भी फैल जाएगा
2: और इससे जो बेतरह गर्मी पड़ रही थी उसे हमें बहुत राहत मिली है। और ये भी बता दें कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश जारी रहेगी। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र तल पर मौसमी टर्फ पश्चिमी राजस्थान से गंगेटिक पश्चिम बंगाल तक झारखंड होते हुए गुजर रही है, जिससे एक सिस्टम सक्रिय बना हुआ है। इसका असर अगले कुछ दिनों तक झारखंड में दिख सकता है और कुल मिलाकर मौसम जो है वो सुहावना रहेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी इससे सभी ने राहत भरी सांस ली।
2: बिल्कुल।

0: और हिमांशु, अब बात करते हैं कुछ खेल जगत की।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो फीफा विश्व कप के बारे में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व कप के अपने पहले मैच में 2-0 से की जीत से तुर्की की वापसी के जश्न के रंग में भंग डाल दिया और नेस्टोरी बने सबसे युवा गोल स्कोरर भी। और ये भी बता दें कि ब्राजील ने मोरक्को को ड्रॉ पर रोक कर अपराजय का रिकॉर्ड कायम रखा। साथ ही 36 वर्ष बाद स्कॉटलैंड जीता और मनाया वापसी का जश्न।
1: और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि T20 विश्व कप जो महिला का चल रहा है उसमें भारतीय स्पिनरों का जादू चला। पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी मात्र 106 रन पर सिमट गई। भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई। सलामी बल्लेबाज स्मृति

0: हरियाणा के अर्धशतक के बाद अनुभवी दीप्ति शर्मा के 5 विकेट से भारत ने आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के ग्रुप एक मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की।
1: और भारत की टी20 विश्व कप में पाकिस्तान पर यह सबसे बड़ी जीत है। भारत के 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ऑफ स्पिनर दीप्ति 10 रन पर 5 विकेट लेकर करियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 17 ओवर में 106 रन पर सिमट गईं।

0: और हिमांशु, हर लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और मंजिलों को पाते रहें।
1: जैसा कि आज हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि हाँ, आज का ये कार्यक्रम मात्र आधे घंटे के लिए ही था हमारे श्रोताओं के लिए।
0: हाँ, तो

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सरकार के 12 वर्ष बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक से प्रभु शरण की गई बातचीत अब हम सुनेंगे। प्रभु शरण बातचीत कर रहे हैं विनोद कुमार से।
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के निदेशक श्री विनोद कुमार। एयरपोर्ट प्रबंधन और विमानन क्षेत्र के व्यापक अनुभव के साथ आप हवाई अड्डे के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपका आकाशवाणी रांची में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दें और ये बताएं कि विमानन क्षेत्र से आप कब जुड़े, कैसे जुड़े?
2: जी, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लगभग 25 से 26 साल पहले मैंने इसको ज्वाइन किया था। और मैं पहली बार जब एयरपोर्ट डायरेक्टर बना, मुझे पहला कार्यभार जो है वो अयोध्या एयरपोर्ट का दिया गया। वो 2025 में लगभग मैंने 9 महीने वहाँ पर अपनी सेवा दी और विमानपत्तन निदेशक के कार्य का एक अनुभव लिया। फिर मेरा एक उच्च श्रेणी में रांची एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ पर अक्टूबर 2025 में मैंने कार्यभार ग्रहण किया। यहाँ पर मैंने देखा कि ये शहर प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है और ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों की कनेक्टिविटी है और काफ़ी जो है यहाँ की आपके जनजीवन पे, आपके व्यापार पे और रोजगार पे काफ़ी इसका योगदान है यहाँ।
1: अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, इसने अपने 12 वर्ष पूरे किए हैं और इन 12 वर्षों में अगर हम बात करें कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया है, तो इस पर आपकी क्या राय है?
2: जी, ये 12 साल जो है एक काफ़ी बड़ा समय है, एक लंबी अवधि है और इस दौरान जो है काफ़ी परिवर्तन, बहुत से परिवर्तन इस रांची एयरपोर्ट ने देखे हैं। यहाँ पर पहले जो है रात्रि में उतरने के लिए सुविधा नहीं थी, तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसको रात्रि में भी यहाँ पर हवाई जहाज उतर सकता है, इसका जो रनवे है वो इसका बढ़ाया गया ताकि यहाँ पर बड़े जहाज उतर सकें। फिर यहाँ टर्मिनल की क्षमता जो है इसको बढ़ाया गया ताकि अधिक यात्री इसमें यात्रा कर सकें। एक साथ कई विमान अगर आ जाते हैं और जाने वाले होते हैं तो यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जाने वाले को भी और आने वाले को भी, तो टर्मिनल की जो क्षमता है उसका जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को हम सेवा दे सकें। तो तकनीकी रूप से और यात्रियों की सुविधा के दृष्टि से काफ़ी विस्तार हुआ है एयरपोर्ट पे इन 10 से 12 वर्षों में।
1: जी, इसके बारे में हम और भी बातचीत करेंगे, क्षेत्रवार बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि आप एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं और आकाशवाणी में आप पहली बार आए हैं और कई हमारे ऐसे श्रोता हैं जो अभी तक उन्होंने एरोप्लेन में यात्रा नहीं की, हवाई जहाज की यात्रा नहीं की है, तो अगर कोई पहली बार यात्रा करता है
2: जी,
1: तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन व्यक्तियों को थोड़ा इसके बारे में बताएं।
2: जी, एयरपोर्ट से यात्रा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और एयरपोर्ट से जो यात्रा होती है वो बहुत ही सिक्योर और सेफ यात्रा, इसको हम इसमें ध्यान में रख करके इसका परिचालन करते हैं। तो यात्री का अपना जो उसका पहचान, उसके सही व्यक्ति यात्रा कर रहा है, उसका जो टिकट है, कोई अन्य व्यक्ति उसकी जगह न चला जाए
1: जी,
2: और वो अपने साथ कोई ऐसी वस्तु न ले जाए जो कि किसी के जान माल के लिए खतरा है। तो हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए CISF एक यूनिट एजेंसी है जो कि सुरक्षा के पूरा देखभाल का जिम्मा उसका है
1: जी।
2: तो ऐसी चीज़ें कि उसका एक वैध यात्री ही वहाँ से यात्रा कर रहा है और सही सामान के साथ यात्रा कर रहा है
1: जी जी,
2: इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है उस नियमों के तहत। और इसके अतिरिक्त वो पहली बार यात्रा कर रहा है तो उसे ऐसा अनुभव नहीं लगेगा कि मुझे काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है
1: जी जी।
2: वहाँ पे सेवा देने के लिए और पूछताछ केंद्र, काउंटर वगैरह हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कोई भी दिशा निर्देश चाहिए या कोई सहायता चाहिए तो उसे वो सहायता देकर उसकी गंतव्य स्थान पे जाने के लिए सारे रास्तों से उसको परिचित करा करके और उसको बोर्डिंग गेट तक पहुंचाया जाता है
1: जी। एयरपोर्ट का महत्व तो हम लोग सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा है। झारखंड के अगर हम पर्यटन या फिर उसके व्यापार के बारे में बात करें तो उसमें एयरपोर्ट की क्या भूमिका है?
2: सर, झारखंड पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के वाटरफॉल्स हैं, यहाँ पे आपके प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जगह है, मंदिर हैं, और यहाँ पे व्यापार जगत, यहाँ पे माइंस का काफ़ी खजाना है यहाँ पे। तो इन सब जगहों पे जाने के लिए यात्री को समय चाहिए। सबके पास इस समय आजकल समय की कमी है और कम समय में ही उसको सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो एयरपोर्ट और फ्लाइट होने से, कनेक्टिविटी होने से ये बहुत बड़ा फायदा है कि यात्री जो है वो कम समय में इन सब जगहों पे घूम करके, चाहे वो घूमने की दृष्टि से आए, पर्यटन की दृष्टि से आए, या फिर अपने व्यापार की दृष्टि से आए, या फिर ऑफिस के कार्य से आए, तो इन सब के लिए उनको सुविधा देने में इस एयरपोर्ट का और हवाई जहाज का, एरोप्लेन का बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हम उन बड़े बड़े उद्योग संस्थानों की भी बात करते हैं जो कि अलग अलग राज्यों में जाकर अपना जो उपक्रम है उसे, उसकी स्थापना करते हैं और उससे उस राज्य का विकास होता है। तो स्वाभाविक है कि उनके पास समय की कमी होगी और वो अगर जितना उड्डयन क्षेत्र उन्नति करेगा उतना ज्यादा हम व्यापार को आकर्षित कर सकते हैं अपने राज्य में। अब हम बात करें थोड़ा रोजगार सृजन की। एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है और बड़ा उपक्रम है जो कि अपने किसी भी राज्य के लिए, तो इसमें रोजगार सृजन की क्या संभावना है इस क्षेत्र के होने से?
2: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ही संचालित करता है, लेकिन अगर आप देखें तो वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सी एजेंसीज, बहुत सी स्टेक होल्डर्स काम करते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, एयरलाइंस है आपकी, सफाई कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, एयर साइड में आपके ग्राउंड हैंडलर्स हैं और लोडर्स हैं, आपका कस्टम है, इमिग्रेशन है, हमारे जो टर्मिनल के अंदर जो आपके शॉप्स हैं, दुकानें हैं, कंसेशनर्स हैं, ये सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो एक एयरपोर्ट के होने से आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न एजेंसियां उससे जुड़ी हुई हैं और उनमें काम करने वाले लोग, उनके लिए तभी अवसर उत्पन्न हुआ है जब वो उस एयरपोर्ट यहाँ से संचालित हो रहा है। तो ये अपने आप में ही एक रोजगार का जनक है किसी भी स्थान पर एयरपोर्ट का होना।
1: अगर हम खास रांची की बात करें, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, तो इसकी अगर विकास यात्रा बात करें, पहले बहुत कम एरोप्लेन्स यहाँ से फ्लाइट मतलब लेते थे, यहाँ पर उतरती थी हवाई जहाज, आज की स्थिति क्या है इसकी अगर विकास यात्रा को करें बात करें तो आज की स्थिति क्या है?
2: जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि यही एक मानक है जानने का कि कितनी वृद्धि हुई, क्या प्रभाव पड़ा इसमें। 10-12 सालों में अगर हम देखें तो उड़ानों की संख्या, फ्लाइट की संख्या लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। 2.5 गुना से ज़्यादा विमान संचालित हो रहे हैं आज की तारीख में, और 350% के आसपास यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, और यात्रियों की संख्या में वृद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और हमारा जो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसकी भी एक क्षमता जो है वो है। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अभी हम वर्तमान में जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को देखते हुए उसको और विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि कुछ और हमें भूमि अगर मिलती है तो फिर हम उसको और विकसित और बेहतर बना सकते हैं, जिसका कि प्रयास चल रहा है।
1: रांची से अगर हम आपसे पूछें कि कनेक्टिविटी है अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की, तो क्या अगर कोई नई सेवा शुरू होती है तो क्या पर्याप्त संख्या में पैसेंजर्स मिल जाते हैं कि उसका इकोनॉमिकली वायबल होता है वो?
2: जी हाँ, इसके पीछे एक स्टडी होती है। कोई भी एयरलाइंस शुरू करते हैं तो एक उनका नेटवर्क और मैनेजमेंट प्लानिंग होता है एयरलाइंस का, जो उसको अध्ययन करके कि इस रूट पे, इस सेक्टर में हम अगर एयरलाइन शुरू कर रहे हैं तो वो हमारे लिए वायबल होगा, तो वो एयरलाइन शुरू करते हैं, और सामान्यतः वो एयरलाइंस सस्टेन करती है, तो इसका अध्ययन करके वो नई उड़ान्स, नए सेक्टर को चलाते हैं।
1: अभी अगर हम यात्रियों के सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या नई सुविधाएं

0: रीडिंग रूम है, और मेडिकल से रिलेटेड कोई अगर ऐसी आवश्यकता है उसके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था हुआ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप कहीं किसी मॉल में अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलता है, भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें। इसी तरीके से मूलभूत सुविधाएं वो एयरपोर्ट पर रहती हैं। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे प्रश्न पे कि क्या उसमें कुछ अलग आपने किया कि जो वस्तुएं हैं वो महंगी हैं। तो इस दिशा में एक पहल की गई है, उड़ान यात्री सेवा। उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक बहुत ही अफोर्डेबल और रियायत मूल्य पे जो है वो वस्तुएं खाने पीने की जो है वो दी जाती हैं। उसमें आपका 10 रुपए की जो है वो चाय है, 15 रुपए का समोसा है, और कुछ जो मिठाइयां हैं जिसका कोई भी मूल्य जो है वो 20 रुपए के ऊपर नहीं है। तो ये एक आम आदमी जो कि अपने एक कम बजट में अगर कुछ खाना पीना चाहता है तो वो उसका लाभ ले सकता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ के जो आपके स्थानीय जो कलाकार और या आप कह सकते हैं कि जो उनके लोकल आर्ट्स उसके जो लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उस वहाँ पर एक दुकान कह लीजिए, अवसर जिसका नाम है, वहाँ पे वो अपने चीज़ों को बेच सकते हैं और बहुत ही उनको कम दाम पे उनके किराए पे उनको ये सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं उनको।
1: हाँ, तो ये एक अवसर और उड़ान दो चीज़ों के बारे में आपने बताया, और मैं समझता हूँ कि जो आम यात्री
0: जी
1: हैं
0: हाँ
1: या जो उस स्टेट के उस पर्टिकुलर राज्य के जो यात्री हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा अवसर इस अवसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होगा। क्योंकि कोई भी बाहर से आता है तो एयरपोर्ट ही वो पहला पॉइंट होता है जहाँ वो किसी राज्य में एंटर करता है, वहीं पर वो पदार्पण करता है। और वहाँ पर अगर कुछ खासियतें दिख जाएं कि भाई ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये रांची की खासियत है या किसी राज्य की खासियत है, तो इससे बड़ा हेल्प होगा। और उड़ान यात्री कैफे के बारे में जो आपने बताया
0: जी
1: वो
0: हाँ
1: तो खैर बहुत ही उपयोगी मुझे लगा, क्योंकि ये एक आम धारणा तो है ही कि एयरपोर्ट पर वही लोग जाते हैं जो थोड़ा एलिट क्लास के होते हैं,
0: जी
1: लेकिन
0: हाँ
1: ये सामान्य लोगों के लिए भी एयरपोर्ट है ऐसा आपने बताया। अब थोड़ी बात कर ले हम रांची के मतलब जो बिरसा मुंडा है उसकी विकास योजनाओं की। जैसा कि आपने बताया कि क्षेत्र में मतलब विस्तार हो रहा है, अभी जो उड़ान आपने बताया क्या वो रांची में भी लागू है, और क्या देश के सभी एयरपोर्ट्स पर ये सुविधा प्राप्त हो गई है?
0: उड़ान यात्री कैफे बहुत से हवाई अड्डों पे जो है इसका
1: हो गई
0: इसकी
1: है
0: शुरुआत हो चुकी है।
1: रांची
0: और
1: में।
0: जी हाँ रांची में तो अभी जल्दी अभी इसकी हुई है, लेकिन और भी एयरपोर्ट्स को जो है इस योजना को जो है और एयरपोर्ट्स पे भी लागू किया जा रहा है।
1: अंत में एक अंतिम प्रश्न मेरा कि झारखंड के लिए या फिर हमारे देशवासियों के नागरिकों तथा रांची एयरपोर्ट के नागरिकों के लिए या यात्रियों के लिए आपका कोई संदेश है जो आप देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने एयरपोर्ट के माध्यम से रांची की जनता की सेवा में सदैव तत्पर हैं, और हम यही चाहते हैं कि यहाँ का जो व्यापार जगत है, यहाँ का जो रोजगार है और यहाँ का जो पर्यटन है ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम अपना योगदान इसमें देते रहें, और इस एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ के क्षेत्रीय विकास में हम अपना योगदान देते रहें।
1: मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि 15 जून को यात्री सुविधा दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें।
0: जी 15 जून को हम सभी एयरपोर्ट पे यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं, और इसमें हम भिन्न भिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि हम उस दिन को अपने यात्रियों के साथ एक उत्सव के रूप में मना सकें। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम यात्रियों का एक अतिथि के रूप में उनका स्वागत करना, हमारे लोक नृत्य और ये हैं उनके आवभगत के लिए उसका आयोजन करना ताकि उन्हें एक लगे कि यहाँ की संस्कृति क्या है और क्या चीज़ें यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। आप हमारे एयरपोर्ट पे ही जो है वो एक रांची की या ये झारखंड की संस्कृति का आप अवलोकन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एयरपोर्ट को जिस दिन हम सजाएंगे, इसके अतिरिक्त हम कुछ उनके लिए जैसे आपका ब्लड डोनेशन या फिर उनके लिए हेल्थ चेकअप या फिर आंखों की जांच, इस तरीके की चीज़ें हमने रखी है ताकि हमारे और भी लोग जो है हमारे स्टेक होल्डर्स वो लोग उसका लाभ ले सकें। कुछ हमने स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा है, कुछ कल्चरल का प्रोग्राम रखा है, वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा है। तो ये पूरा दिन भर जो है वो हमने अपने कार्यक्रमों से पूरा उसको एक तरीके से समा दिया है कि वो पूरा दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और उस यात्रियों के लिए, और वो यात्री उस दिन को एक विशेष दिन के रूप में याद करेंगे।

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार से प्रभु शरण की गई बातचीत अभी हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

और आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन, शान और केके की आवाज में फिल्म दिल चाहता है का ये गाना। जावेद अख्तर के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

फिल्म सीता और गीता का ये गाना अभी हम सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आप सबों की फरमाइश पर बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी और ललन केशरी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, और आप सब हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। और अब हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ततरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी विपरिया से दुर्गाराम साहू, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, चातेक विरक और मिका विरक। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म अभिमान का ये गाना लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में।

इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्ला नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म चिपके चिपके का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

आपकी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनिए आप सबों की फरमाइश। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्लीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, गौरी शंकर केशरी, शंभू केशरी। गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म परिचय का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में।

आयुसने फिल्म गाइड का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सबों की फरमाइश पर गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनदीप, मंटू, मोनू, सोनू और आराध्या, नूरमहल महसौल, सीतामढ़ी से नुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फराज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजा जहानाज, साजिया शाहीनाज, नाजिया नूरीनाज, क्वाथ बिहार से नरगिस जफर,

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोमानिका और उत्कर्ष नेताम, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म आपकी कसम का ये गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में।

और इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा आपकी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: कार्यक्रम सुनोइया सब श्रोता बहिन मन के सुमन बहिन बटले जोहार संगे वंदा बहिन राव को हो जोहार
1: जोहार सुमन दी और कार्यक्रम सुनोइया सब बहिन मन के वन्ना राय बटले जोहार और असरा करीला कि हमरे कर सब सुनोइया बहिन मन कुशल मंगल से होबे।
0: सही कहती और सब नगदे नगद रहले हैं सब बेस बुझायला है नी वंदा बहिन। और देखो कि जे सब सुनोइये बहिन मन है उमन तो हमरे कर कार्यक्रम के हर दिन सुनते हैं रहे ना और आज हमरे जे खास बात करे वाला ही एगो बात पर कि हमरे परिवार में जे बेरा एक संगे मिलजुल के रही ला जेकर में कि हमरे जैसे कि दादा ना दादी भेली नाना नानी हो लें छुआ पुता मन चाहे माय बाबा सब एक संगे रही ला तो रह कर जे आनंद है वो कुछ और रहे ला है नी वंदा बहिन। और लेकिन आजकल तो हमरे देखा थी कि हमरे का जे परिवार है और बुजुर्ग पीढ़ी मनक कर जे बीच कर दूरी जो है से बढ़ते हैं जाते और आज का जो आधुनिक जीवन शैली है इकर संघे भी एकल परिवार में रहकर चाहे ना ये भी बढ़त जाते और आगे हमरे जो संयुक्त परिवार में रहत रही जहाँ सब गोटा परिवार मिलजुल के रहत रही हुआ ई तरीकर समस्या नहीं भेटात रहे और घर कर जो बड़ बुजुर्ग कर देख रेख और सबकर से मिलकर बातचीत करे गोठियाए एकदम बेस बेकार बात जे भी होते रहे सब हमरे आपस में एक दूसरे से साझा करत रही और मिलजुल के रहत रही इकर में हमरे का दिन काल के बीत जात रहे एहो पता नहीं चलत रहे
1: है नी। सही कहली कि आजकल कर जे भागम भाग जिंदगी हो जा है उकर में बुजुर्ग मन जो है सबसे एकला फील करे ना उमन के एकलापन लागे ला कि उमन से बात नहीं करे ना तो बुजुर्ग और युवा पीढ़ी कर बीच में जो दूरी बढ़ते जाते हैं कई गो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है।
0: सही कर
1: और देखो नहीं हमारे मन के प्रयास करे के चाहिए कि कम करे कर और बुजुर्ग मन कर जो अकेलापन है उके उमन के दूर होवे कर जरूर कई गो उपाय हमारे मन के करे के चाहिए। देखो नहीं जैसे कि हमारे मन बहुत व्यस्त रही आजकल का सब महिला मन भी काम करे ना छुआ मन अपन स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या नौकरी करते हैं तो मन जब भी समय नहीं होवे ला तो हमारे मन के प्रयास करे के चाहिए कि दिन भर में एगो समय हमारे मन के बुजुर्ग से उमन से बात करे कर उमन कर अनुभव लेवे कर उमन से कहानी सुने कर उमन कर छोट छोट जो बात उमन में हमारे मन के ध्यान देवे के चाहिए जेकर से कि उमन अपने के परिवार से जुड़ल महसूस करे।
0: सही कहली।
1: और देखो नहीं उमन कर जे शारीरिक और मानसिक जे स्थिति हो जाए से कि हमरे मन के स्वीकार करे के चाहिए हमरे मन चिड़चिड़ाइला हाँ कि ईसन बोलत है भूल जाते हैं तो ई तो ऊसन नहीं करे के चाहिए। देखो बुढ़ापा सबकर आवेला सबकर एहन स्थिति होवी तो बुढ़ापा में कंधा कर झुके कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन होवे कि सामान्य होवेला से ले सबके धैर्य बनाए के एक संगे इकर ऊपरे काम करे के चाहिए।
0: सही कहली एकदम अपनवत देखा के चाहिए जब हमरे अपन बनाए के उमन के अपनवत देवब और तो सब कुछ एक सही तरीके से समाज से हुई और सही तरीके से समाज से बैठाए के हमरे एक दूसर संगे चल सकीला है नी। और देखो कि आधुनिक जीवन शैली में एखन जे एकल परिवार का जे चलन होते जाते इकर में बुजुर्ग और युवा पीढ़ी जो है इवन एक दूसर से जो दूर और अलग भागत है इकर सबसे बड़ व्यस्त जीवन में तकनीक कर जे लत और विचार कर अंतर से बुजुर्ग मन उपेक्षित महसूस करे ना ईसन में परिवार के जोड़ के रखे के लिए युवा मन के बड़ मन संगे समय बिताए और उमन का जे राय है उमन का जे मशवरा है जे उमन मार्गदर्शन देवे ना से के महत्व देवे के चाहिए और भावनात्मक रूप से सबलता देवे के चाहिए और एक दूसरे से जुड़ल रहे के चाहिए इकर प्रयास हमरे के जरूर करे के चाहिए है नी वंदना।
1: हाँ, और देखो नी वो कहे ना कि जैसन छोट छुआ मन होवेला उसने है बुजुर्ग मन हो जाए ना से उमन के छोट छुआ कर नियर हमरे मन के तनिकुन केयर करे के चाहिए। घर में होवे वाला जो छोट छोट आयोजन मन है पूजा है या त्योहार है तो सब में बुजुर्ग कर अगर राय लेवेला तो पूजा त्योहार आयोजन बहुत बढ़िया से होवेला का लेकिन देखो उमन के जीवन कर बहुत बड़ अनुभव होवेला उमने दुनिया के हमरे से बगरा देखे ना तो उमने हमरे मन के सही सलाह देवे कोई भी काम में हमरे मन उकर से मदद लेब तो हमरे कर काम भी आसान होवी।
0: सही।
1: और अगर यदि परिवार कर युवा सदस्य दूर रहे ना तो उमने वीडियो कॉल या मैसेजिंग कर माध्यम से उमन से नियमित रूप से जुड़ सके ना संपर्क कर सके ना बातचीत कर सके ना
0: बढ़िया माध्यम मिल गया है कहो कि वीडियो कॉलिंग जेकर में कि हमरे एकदम बुझाएला कि जैसे आमने सामने बैठ के बात करे थी और एकदम अपनापन कर एहसास देवेला और बस माय बाबा जो है ना चाहे जे भी बुजुर्ग मन है उमन इतने कन खातिर मिल गेले बात दुगो गोठिया
1: खुश
0: तो उकरे से उमन कर आत्मा एकदम तृप्त हो जाए ना खुश हो जाए ना।
1: और देखो नहीं, सबसे बड़ चीज है मन कर स्वास्थ्य कर देखभाल। तो बुजुर्ग कर जे स्वास्थ्य उग बटे हमरे मन के तनी ध्यान देवे के चाही, बगरा बल्कि देवे के चाही। उमन कर नियमित चेकअप भी करवाए के चाही और उमन के कखनो ई महसूस नहीं होवे देवे के चाही कि उमन ने हमरे ले बोझ है।
0: सही काली और एकला है उमन कर जीवन के आगे देखे ले, बुझे ले, समझे ले, हर घड़ी हमरे तत्पर ही और तैयार ही इकर एहसास जरूर करवाए के चाही। और जितना ज्यादा हमरे बुजुर्ग मन के परिवार में महत्व देवब उतने बढ़िया रही। और जे छुआ पुता मन भी है ओहो मन संस्कार भेटाए ना, और छुआ मन अपन माए बाबा के अपन घर में दादा दादी संगे बुजुर्ग मन संगे सही बर्ताव करते देख मैं तो आवे वाला दिन में वो मन सीख मैं कि परिवार में सब एकदम से कम दिन भर में एक बार बैठ के जरूर
1: के बात
0: अपन परिवार से बात
1: देखो ये जिम्मेवारी तो कहब कि माए बाबा कर बगरा है कि अगर छुआ मन देख मैं कि हमार माए बाबा बड़ बुजुर्ग की इज्जत देवत है, सम्मान देवत है, उमन से बातचीत करत है, उमन कर देखभाल करत है, तो छुआ मन भी ओहे देख के सीख बा।
0: हाँ वह संस्कार आवी और हमरे कर आवे आवे वाला जो भावी अथी रही पीढ़ी रहा उमन हमरे ले बहुत बढ़िया हो
1: बढ़िया
0: है नहीं। तो चलो गोठिया ले तो गोठिया
1: से ले परिवार के बुजुर्ग से दूरी बनाए के नखे उमन के अपन से जोड़े के
0: अपना वत रखे उमन पच्ची एकदम भावनात्मक लगाव रख के उमन के संगे रहे के सफलता देवे के।
1: तो चलो बहन एखन आप तो गीत सुने कर बेरा होते हैं तो चलो सुनीला नागपुरी लोकगीत कालिंदी कुमारी और संगी मन कर गावल।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ये रहे विज्ञापन संदेश। इकर पहले हमरे सुन ली कालिंदी कुमारी और संगी मनकर गावल नागपुरी लोकगीत। और चलो अब जानकारी कर लेला। अनुभव जो है हमरे कर जीवन में जे भी अनुभवी हैं उनकर सम्मान करे चाहिए। इकरे बारे हमरे के बताते हैं आज प्रमोद कुमार राय और इनकर से बातचीत कर रहे हैं वंदना बहिन।
3: कहते हैं मनुष्य जीवन भर सीखता ही रहता है, कभी देखकर, कभी सुनकर और कभी पढ़कर। ऐसा नहीं है कि जीवन में आदमी सब कुछ जानता ही हो, जीवन पर्यंत वह सीखता रहता है। जो चीज स्कूलों में देखने में या सुनने में छूट जाता है, उसे अनुभव से भी आदमी, दूसरों के अनुभव से भी आदमी सीख सकता है। दूसरों का अनुभव को सम्मान करना बहुत ही जरूरी है और यह मनुष्य के जीवन में नया परिवर्तन लाता है। दूसरों का अनुभव हमें जीवन में गलतियों से बचाता है, व्यावहारिक ज्ञान देता है और पीढ़ियों के बीच तालमेल बिठाता है। अनुभवी लोग जीवन के उतार चढ़ाव देखकर सही फैसले लेने की कला सीख जाते हैं। अनुभव के सम्मान से मिलने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। पहला तो गलतियों से बचाव होता है। अनुभवी लोगों की सलाह हमें वो गलतियां दोहराने में रोकती हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में की हैं। दूसरा है व्यावहारिक ज्ञान। यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने से उत्पन्न होता है। और उसके बाद बेहतर मार्गदर्शन। किसी भी क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ कठिन परिस्थितियों में सबसे सटीक समाधान प्रदान कर सकते हैं और उसका लाभ हमें मिल सकता है। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य। बुजुर्गों या वरिष्ठों का सम्मान हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है, जो सभी में आपसी विश्वास को मजबूत करता है।
4: अनुभवी लोगों से हमें जीवन में क्या सीखने को मिलता है?
3: अनुभवी लोगों से हमें जीवन की अनमोल सीख, व्यावहारिक ज्ञान और गलतियों से बचने के तरीके मिलते हैं। उनकी सलाह हमें कम समय में सही निर्णय लेने और चुनौतियों का डटकर सामना करने का हौसला देती है। अनुभवी लोगों के सानिध्य और जीवन से हमें मुख्य रूप से ये बातें सीखने को मिलती हैं। सही और गलत की पहचान। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसलिए

0: वे हमें परिस्थितियों का सही आकलन करना और सही गलत में भेद करना सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य का भी काम आता है। जीवन में आने वाली मुश्किलों और असफलताओं का सामना कैसे करना है यह हमें उनके अनुभवों से पता चलता है और वे हमें हार न मानने की सीख देते हैं। समझदार और अनुभवी लोग अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। उनके अनुभवों को जानकर हम उन सामान्य गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। किताबों या शिक्षा से जो सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, अनुभवी लोग उसे असल जिंदगी में लागू करने का व्यावहारिक तरीका सिखाते हैं। जो काम हम खुद ठोकर खाकर सालों में सीखते हैं, वह ज्ञान हमें अनुभवी लोगों से बातचीत और मार्गदर्शन से तुरंत मिल जाता है। जीवन के लंबे सफर में जिन्होंने लोगों के साथ जीना सीखा होता है, वे हमें बताते हैं कि सफलता के साथ साथ रिश्तों, धैर्य और विनम्रता का क्या महत्व है।
1: हमारे परिवार में बुजुर्गों का अनुभव किस प्रकार उपयोगी होता है?
0: जी, परिवार में बुजुर्गों का अनुभव एक अमूल्य धरोहर है। उनका लंबा जीवन अनुभव युवा पीढ़ी को सही दिशा निर्देश, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और अटूट भावनात्मक संबल प्रदान करता है। वे परिवार के नींव होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन के व्यावहारिक पाठ सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार में बुजुर्गों के अनुभव और उपस्थिति इन तरीकों से उपयोग में आती है। बुजुर्गों ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उनके इसी अनुभव से युवाओं को कैरियर, रिश्तों या आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना करने की सीख मिलती है। किताबों में जो ज्ञान मिलता है वह सैद्धांतिक होता है, वहीं अनुभवी लोगों के पास वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके समाधान का व्यावहारिक ज्ञान होता है। अनुभवी लोगों से जुड़ने पर युवाओं को उनके विस्तृत नेटवर्क का लाभ मिलता है। यह पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी पाने या व्यवसाय शुरू करने में मददगार साबित होती है। अनुभवी लोगों से बात करके युवा उन गलतियों से बच सकते हैं जो उनके मार्गदर्शक अपने शुरुआती समय में कर चुके होते हैं। जब किसी अनुभवी व्यक्ति से युवा बात करते हैं तो उन्हें अपने विचारों के लिए प्रोत्साहन मिलता है तो उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ता है। कार्यस्थल पर अनुशासन, टीम में काम करना और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना जैसे गुण अनुभवी लोगों के सानिध्य में ही सीखे जाते हैं।
1: अनुभव और ज्ञान के बीच में क्या आपसी संबंध है?
0: वास्तव में ज्ञान और अनुभव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान हमें सिद्धांत, नियम और क्या सिखाता है, जबकि अनुभव हमें वास्तविक दुनिया में उसका सही उपयोग और कैसे करना है यह सिखाता है। इनके बीच के गहरे पूरक संबंधों को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। ज्ञान पुस्तकों, शिक्षा और दूसरों की सीख से प्राप्त होता है, जबकि अनुभव वास्तविक जीवन में परिस्थितियों का सामना करके और कार्यों में सीधे भागीदारी करके आता है। ज्ञान हमें किसी काम को करने का तरीका बताता है, लेकिन जब हम उसे असल जिंदगी में लागू करते हैं तो अनुभव हमें उस तरीके को और बेहतर और सटीक बनाना सिखाता है। बिना अनुभव के ज्ञान अधूरा और केवल सैद्धांतिक रह जाता है। उदाहरण के लिए, तैरने की कला किताबों से पढ़ी जा सकती है, लेकिन पानी में उतरने का साहस और असली महारत केवल अभ्यास से ही आती है। ज्ञान आपको विकल्प देता है, लेकिन कौन सा विकल्प सही होगा यह आपका पिछला अनुभव ही तय करता है।
1: युवाओं को अनुभवी लोगों से जोड़ना क्यों जरूरी है?
0: युवाओं को अनुभवी लोगों से जोड़ना उनके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह जुड़ाव युवाओं को सही मार्गदर्शन और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। अनुभवी लोग केवल अपनी सफलताओं से प्रेरित करते हैं, जबकि अपनी गलतियों से सीखे गए सबक साझा करके युवाओं को करियर और जीवन की चुनौतियों से पार पाने में सहायता करते हैं। युवाओं को अनुभवी लोगों से जुड़ना चाहिए। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। अनुभवी पेशेवर या बुजुर्ग सही और गलत का सटीक आकलन कर सकते हैं और उनका मार्गदर्शन युवाओं को करियर के शुरुआती दौर में भटके बिना सही राह चुनने में मदद करता है। किताबी ज्ञान केवल सिद्धांत सिखाता है, लेकिन अनुभव हमें यह सिखाता है कि असल दुनिया में समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। हमारे अच्छे और बुरे अनुभव ही हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं और हमें भविष्य के लिए अधिक समझदार और सतर्क बनाते हैं।
1: अनुभव का सम्मान न करने पर हमें क्या नुकसान हो सकता है?
0: अनुभव का सम्मान न करने से अमूल्य ज्ञान का नुकसान होता है। बार बार वही गलतियां दोहराने का जोखिम बढ़ता है और मार्गदर्शन के अभाव में प्रगति रुक जाती है। इससे रिश्तों में विश्वास टूटता है और कार्यस्थल पर टीम का मनोबल गिरता है। अनुभव हमें सिखाता है कि आप किन रास्तों पर चलकर सफल हो सकते हैं या किन रास्तों पर चलकर आपको असफलता मिलती है। यदि आप अनुभवी लोगों की सलाह नहीं मानते तो आप भी वही पुरानी गलतियां करके समय और संसाधनों का नुकसान कर सकते हैं। बार बार अनदेखा किए जाने पर अनुभवी लोग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। इससे रिश्तों में दरार आ जाती है और वे भविष्य में सही सलाह या मदद देने से पीछे हट जाते हैं। मार्गदर्शन का अभाव एक अनुभवी व्यक्ति संकट के समय सही दिशा दिखा सकता है। उनके सम्मान के अभाव में व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भटक सकता है और सही निर्णय नहीं ले पाता।
1: अनुभव का सम्मान करने से हमारे समाज को क्या लाभ हो सकता है?
0: अनुभव का सम्मान करने से हमारा समाज अधिक सुदृढ़, ज्ञानी और समरस बनता है। इससे पीढ़ियों के बीच की खाई कम होती है। युवाओं को सही मार्गदर्शन और गलतियों से सीखने की सीख मिलती है तथा वरिष्ठ नागरिकों को समाज में गरिमा और उद्देश्य की भावना प्राप्त होती है। अनुभवी लोगों के पास व्यावहारिक ज्ञान का खजाना होता है। उनका सम्मान करने से यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, जिससे युवा कम गलतियों के साथ तेजी से सीखते हैं।
1: आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि अनुभव का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रहे प्रमोद कुमार राय जी, हमरे के जानकारी करवाते रहे कि अनुभव से ही हमरे का जीवन बढ़िया बन सकेला और अनुभव कर सम्मान हमरे के अवश्य करे के चाहिए। इनकर से बातचीत करत रहे वंदना बहिन। चलो अब हमरे एगो नागपुरी लोकगीत के सुन लेला। ई है यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।

0: ई रहे यशोदा देवी और संगी मनकर गावल नागपुरी लोकगीत।
1: तो सुमंदी आप तो हमरे कर जाय कर बेरा होते, तो अगला सोमवार के हमरे अपन बहिन मनकर संगे फिर से गोठियाब। तब तक खातिर देव विदा, जोहार
0: जोहार।

एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनिए गोपाल दास नीरज के बोलों को शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम कन्यादान।

आयुषी ने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गाना बोलो को लिखा है निधा फाजली ने और धुन तैयार की है उषा खन्ना ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म द ट्रेन का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

आइए सुने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बेटी बेटे का ये गाना। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी हम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा, राष्ट्रीय खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरे स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and the UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
3: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online, and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds immense significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
4: Prime Minister Narendra Modi has said the middle class of the country have contributed to nation building in countless ways and the NDA government is privileged to be working towards fulfilling their aspirations. In a social media post, Mr. Modi noted that over the last decade, governance has increasingly focused on improving the quality of life of ordinary citizens. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal.
5: This year, because of El Nino, I think we are preparing for not so good a monsoon. Of course, we have enough buffer stocks since last year for May, so his income will be stressed out.
4: Union Ayush Minister Pratap Rao Jadhav today said the main national event of International Day of Yoga 2026 will be held in Kolkata on the 21st of June, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations. Addressing the curtain raiser press conference for the International Day of Yoga 2026 in New Delhi, the minister noted that the theme for International Day of Yoga 2026 is Yoga for Healthy Aging, which addresses one of the most significant challenges of the modern era. The United States and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the afternoon session today following the announcement of a peace deal between the United States and Iran. The Sensex climbed 922 points to 76,450, while the Nifty rose 287 points to 23,910 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किया जारी। 21 जून को होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रांची माहुलिया टाटा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की 126 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास के लिए 214 करोड़ रुपए की ओवरले परियोजना स्वीकृत। रांची रेल मंडल ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सैकड़ों कोचों में लगाएगा सीसीटीवी। और केरल में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में रांची के विशाल बहादुर ने हासिल किया दूसरा स्थान। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार।

0: की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि बढ़ती मांग के अनुरूप इन जिलों को 800 मेगावाट बिजली की जरूरत है। इधर पतरातु थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी यूनिट से 800 मेगावाट बिजली उत्पादन जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके शुरू होने के बाद डीवीसी कमांड एरिया के जिलों में बिजली आपूर्ति में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर प्रोजेक्ट भवन से निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पूरे राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और नशे की रोकथाम के लिए लोगों को प्रेरित करना है। गुमला जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने आज समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को लेकर नशा मुक्ति प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले में नशा के खिलाफ आगामी 26 जून तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा।
1: नशा को कैसे हम लोग नियंत्रित करेंगे, इसको लेकर जागरूकता फैलाने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हमारे सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी जागरूक करके और वो जाकर अपने परिवार के लोगों को कैसे समझाएं, इसके दुष्प्रभाव और वास्तव पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ नशापन के कारण अपराध देखने को मिलता है।
0: जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती, देश के सुख समृद्धि और समाज के सर्वांगीण विकास की कामना को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने चूना शाह बाबा के मजार पर चादरपोशी कर विशेष दुआ की। लोगों ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में सहभागी हैं।
2: समाज के आखिरी व्यक्तियों तक पहुंच करके उसे पहली पंक्ति में ला के खड़ा करना, चाहे वो जिस समुदाय से आता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का विकास हो। वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी समाज का कोई भी वर्ग अगर छूट जाएगा तो ये देश उन्नति नहीं करेगा।
0: धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र में बिना लाइसेंस के उर्वरक, बीज और कीटनाशी बेचने के मामले में कृषि विभाग ने दुकान को सील कर दिया है। जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने कहा कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
3: दीपक बीज भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से जो कीटनाशी है वो बड़ी मात्रा में पाया गया है, जबकि इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं था। इनके बार बार कहा गया कि आप अपना अनुज्ञप्ति प्रेषित करें, परंतु किसी भी प्रकार से अपनी अनुज्ञप्ति प्रेषित नहीं कर पाए। साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ कुछ अनियमितताएं भी पाई गई है, तो इसलिए उसको जब्ती करते हुए दुकान को सील किया जा रहा है।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से रांची माहुलिया टाटा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की 126 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए 214 करोड़ 79 लाख की ओवरले परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसका निर्माण 18 जून को भूमि पूजन के बाद शुरू होगा। इससे रांची जमशेदपुर के बीच आवागमन आसान होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। रांची रेल मंडल ने ट्रेन की बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में तेजी से पहल की है। पहले चरण में 150 बोगी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि 730 अतिरिक्त कोचों में कैमरे लगाने के लिए निविदा निकाली गई है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी, छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लाना है। जमशेदपुर प्रधान डाकघर परिसर में कल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में डाक कर्मियों और स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। डाक सहायक

0: चरण साधु ने 60वीं बार, श्यामल महतो ने 36वीं बार, जबकि चूना राम हांसदा ने 33वीं बार रक्तदान किया। मौके पर वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने कहा कि डाक विभाग आगे भी सामाजिक अभियान जारी रखेगा।
1: टीम है इस वर्ष का मानवता की एक बूंद जिंदगियां बचाए। हमारे डाक परिवार के स्टाफ से, ग्रामीण डाक सेवकों जो रक्तदान करेंगे, उनसे अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। इसी टीम को दिमाग में रखते हुए मैंने ये आयोजन आज जमशेदपुर प्रधान डाकघर में करवाया है।
0: धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में असम की एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि युवती के आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
2: एक लड़की के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और उस लड़के को वहां से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहां से वो यहां घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना कारित हुई।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर शुरू हुआ, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंकों की बढ़त के साथ 23985 पर खुला। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये प्रति किलो है। केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप में रांची के विशाल बहादुर ने 16.10 मीटर की छलांग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन ने बधाई दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किया जारी। 21 जून को होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रांची महुलिया टाटाखंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की 126 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास के लिए 214 करोड़ रुपए की ओवरले परियोजना स्वीकृत। रांची रेल मंडल ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी, छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सैकड़ों कोच में लगाएगा सीसीटीवी। और केरल में इंडियन एथलेटिक सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में रांची के विशाल बहादुर ने हासिल किया दूसरा स्थान। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आयु सिने उप शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम सुनेंगे अनीता सेन को। सबसे पहले इनसे सुनते हैं ये बंदिश। इसे लिखा है अमीर खुसरो ने और आवाज है अनीता सेन की। बोल है मोरा बाला चुवनवा।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे थे अनीता सेन को। अब इसी के साथ आज की अनुरंजनी संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे सुगम संगीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आज के सुगम संगीत में हम सुनेंगे चंद गजलें। ये पहली गजल आशा भोसले की आवाज में

और आइए सुगम संगीत में आप सुनते हैं मेहंदी हसन की गाई कुछ गजलें। सुनते हैं ये पहली गजल सुहैल राणा की लिखी हुई।

0: Uttar Pradesh, Odisha and West Madhya Pradesh today. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh days. India's wholesale price index, WPI-based inflation, accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 beginning participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित

0: चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियान, फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का

0: सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: ओडिशा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गाँव और पब्लिक पार्क खुशी और सबसे भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। रजक का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक रजापान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्ति

0: स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: कटपड़े भारतीय सेना।
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम जय भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं मुकेश का गाया ये गाना। इसे हमने लिया है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, उस फिल्म से। बोलो को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म शिकारी का ये गाना, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में, फारूक कैसर के बोल हैं और जीएस कोहली का संगीत।

आइए सुनते हैं फिल्म सूरज का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी हम सुन रहे थे जय भारती, और अब आज की जय भारती संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्र ने झारखंड के 126 किलोमीटर से अधिक लंबे रांची महोलिया खंड पर सड़क निर्माण कार्य के लिए 214 करोड़ 79 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस परियोजना को रांची और जमशेदपुर के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि इससे यात्रा अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक होगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके सुदृढ़ीकरण से क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार अब प्रत्येक महीने की 15 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित होगी।
1: सरकार उनकी है, विधायक उनका है, गठबंधन उनका है, तो इस तरह के चिंता दिखाने का, बताने का क्या पर्पज है? उनके अंदर एका नहीं है, उनके जो भी कार्य है, जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत जाता है। तो ये अनेक तरह के इनके अंदर का खटराग है और इसी कारण से अपने कमजोरी, अपनी कमियों को दबाने के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगा करके अपने को सेव कर।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो के चर्चित तेतुलिया जमीन विवाद मामले की जांच की न्यायिक निगरानी से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि केवल आशंकाओं के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि जांच एजेंसियां आरोपितों को लाभ पहुंचाएंगी। अदालत ने कहा कि फिलहाल जांच की न्यायिक निगरानी की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने एजेंसियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून सम्मत तरीके से जांच पूरी कर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने का निर्देश दिया है। झारखंड के नए एडवोकेट जनरल रोहिताशिया रॉय ने आज हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद वरीय अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिकों ने उन्हें बधाई दी। इससे पहले पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश अनुसार 5 जून से 30 सितंबर

0: सितंबर 2026 तक जिले के सरकारी और गैर सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1,57,625 पौधे लगाए जाएंगे। जिले के 2,558 विद्यालयों को पौधरोपण का लक्ष्य दिया गया है। विद्यालय परिसरों के साथ साथ घरों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर आज नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत साहिबगंज में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने जागरूकता रथ को रवाना किया। यह अभियान 26 जून तक लोगों को जागरूक करेगा। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर गुमला सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. शंभुनाथ चौधरी ने लोगों से डेंगू से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में पनपता है, दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है।
1: डेंगू है या चिकनगुनिया है, ये एक वायरल डिजॉर्डर है और ये जो साफ पानी होता है उसी में इसका ब्रीडिंग होता है। तो इसीलिए हमारी तरफ से आपको ये संदेश है कि कोई भी अपने इर्द गिर्द जितना भी जगह है वहाँ पर पानी जमाव न होने दें। एटलीस्ट संडे के दिन जब आमतौर पर आप खाली होते हैं तो अपने शहर के इर्द गिर्द कोई पानी नहीं जमने दें।
0: थ्रोबॉल रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 17 और 18 जून को द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 आयोजित होगी। इसे लेकर भारतीय थ्रोबॉल संघ और झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ आज प्रतियोगिता की तैयारियों, भाग लेने वाले देशों और आयोजन की रूपरेखा समेत अन्य जानकारी देगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 110.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आयुष ने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको

0: भी राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है।
1: आदरणीय अजीत जी व बिमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
0: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
0: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है, आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताज़ा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छाओं में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।

वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट

0: बिस्कुट थे, उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
2: लड़के, तू जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
2: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
2: क्या कंचा चाहिए?
1: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
1: नहीं।
2: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुना।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की

0: जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
1: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
1: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
1: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
1: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रो के उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला।
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंच

0: भी खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
2: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लो।
0: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं,
5: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर

0: फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
2: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: है। उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
4: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
4: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है।
4: उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे।
3: अभी हम सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है आर्थिक विकास। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्री नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और श्रीमती संहिता सुचारिता, सहायक प्राध्यापक इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकेट्टा।
5: आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित आज के परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम किरकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस विशेष परिचर्चा में। आज का विषय है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आर्थिक विकास पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं श्री नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और डॉक्टर संहिता सुचारिता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची। नवजोत जी और संहिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
6: नमस्कार।
7: नमस्कार, थैंक यू।
5: जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारी जीडीपी है 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में जानी जा रही है। नवजोत जी, इस आर्थिक रफ्तार का श्रेय आप किस मुद्दे को देना चाहेंगे, किस बात को देना चाहेंगे?
7: देखिए, मैं इसमें सबसे ज्यादा श्रेय तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देना चाहूंगा, और मेरे को लगता है कुछ स्टेप्स उनके रहे हैं पिछले 12 वर्षों में, जिनसे हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंचे हैं, और जिसमें जीएसटी एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से और जो उसके बाद चेंजेस हुए, तो उससे जो टैक्स कलेक्शंस हुआ है ये अपने आप में बहुत हर साल हम देखते हैं बढ़ता जाता है। तो ये मेरे को लगता है ये सिंगल में अगर कुछ बोलेंगे तो सिंगल एजेंडा में जीएसटी मेरे हिसाब से रहेगा।
5: जी जी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आप, जीएसटी में जो सुधार हुआ है और कर संग्रह में जो सुधार हुआ है इसके बारे में।
7: देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे चेंजेस के बाद जीएसटी में जैसे 5 अलग अलग स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, तो पहले जैसे हम देखते थे कि ये एनुअली होता था, तो फिर आप जीएसटी में मंथली होता है, मंथली आपको भरना पड़ता है। तो उससे जो भारत में जो टैक्स कलेक्शन है, आज जो इतना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो उसका ये काफी बड़ा हेल्प है जीएसटी में। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊंगा ईवे बिल, तो ईवे बिल आने से जो बिजनेसमैन को बहुत सारी दिक्कतें होती थी वहां जाके प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए, वहां मैनुअली जाना पड़ता था, आज ईवे बिल से वो सब में बहुत फायदा हुआ है। जेम पोर्टल, पहले हम देखेंगे कि जेम पोर्टल नहीं था तो टेंडर्स में बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती थी, बहुत सारे प्रो एंड रूल्स होते थे जिसको आप समझ सकती हैं। तो अब वो है क्या कि जेम में आप ऑनलाइन टेंडर्स भरें, और उससे काफी एक तो रेट किफायत भी मिलता है, L1 भी होता है, और गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट में भी जो भी चीज गवर्नमेंट खरीदना चाहती है तो उनको फायदा होता है, क्योंकि आप वो पैन इंडिया देख सकते हैं कि L1 ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। L1 क्या है, पहले इसमें होता था कि कोई लिमिटेड 3 टेंडर्स डले, उसमें रेट किसी का एक मतलब तीनों में एक को कम कर दिया और उसको L1 वो घोषित हो गया। अब वो है जेम पोर्टल के थ्रू है कि वो पूरे इंडिया में जहां सबसे कम है वो उस रेट पे होगा। तो ये मेरे को लगता है ये भी एक काफी बड़ा स्टेप है जिससे गवर्नमेंट की करोड़ों की सही सामान मिल पा रहा है और उचित दाम में मिल पा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है।
5: अगर आज यहाँ से कोई जेम से ऑर्डर करता है और वो सामान आ रहा है पौंडीचेरी से
7: जी,
5: तो फिर उसकी वैबिलिटी कैसी रहेगी?
7: मैम इसमें ऐसा होता है ना, जैसे वो पर्टिकुलर सामान उसको देना है
5: जी,
7: तो वो सामान वो मैन्युफैक्चरिंग से वो उसके पूरे पेपर्स वहाँ पे अपलोड रहते हैं, तभी वो बिड कर पाएगा और बिड पे जिसका बेस्ट रेट होगा वो उस हिसाब से होता है। हाँ, इसमें मैं एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि जैसे लोकल स्तर पे भी, सपोज हम झारखंड से बात करें तो झारखंड या हर स्टेट को एक, जैसे MSME में एक मिनिमम है कि इतने परसेंट स्टेट का भी कुछ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो उस तरह से छोटे स्टेट्स को भी कुछ, वहाँ के डीलर्स को भी कुछ प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि वो कम्पीट कर सकें
5: जी, जिससे कि इन योजनाओं का विकेंद्रीकरण हो
7: जी,
5: छोटी जगहों पर भी
7: जी,
5: इनका लाभ
7: हाँ,
5: मिले
7: हाँ,
5: और जैसे कि हम बात कर रहे थे कर संग्रह की, GST की, तो मैं आपसे इस पर जानना चाहूंगी संहिता जी कि किसी देश के विकास के लिए कर संग्रह सही तरीके से होना और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना कितना मायने रखता है?
2: सबसे ज्यादा कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगा अगर उसके पास रेवेन्यू रहेगा, मतलब अगर कैपिटल ही नहीं है तो हम ग्रोथ के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो कैपिटल मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो लोन ले या तो रेवेन्यू कलेक्शन करे, तो लोन कभी भी सही तरीका नहीं होता है, इसलिए कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो सर ने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि जो GST रिफॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, तो उसके वजह से 17 टाइप्स ऑफ जो टैक्स थे वो एक ही टैक्स में हो गए, वन नेशन वन टैक्स, तो उसके वजह से बहुत सारा कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन ये सब प्रॉब्लम जो है वो इरेडिकेट हो गया, और सारे स्टेट को एक ही टैक्स पॉलिसी फॉलो करना है और वो बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म तो एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है जो 2017 में आया था, फिर अगेन 2025 में उसका रेट जो है वो रेशनलाइज हुआ, टू स्लैब में हुआ, और जो लग्जरियस कमोडिटी थे उसका रेट बढ़ा, तो उस सबसे मतलब टैक्स कलेक्शन अचानक से तो नहीं बढ़ेगा लेकिन ग्रेजुअली वो बढ़ता ही रहेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो टैक्स विभाजन हो रहा था उसकी मात्रा घट जाएगी, क्योंकि सबको GST करना पड़ेगा और 3 नंबर ऑफ कंपल्सरी है, उसको छोड़ के इनकम टैक्स में भी बहुत रेशनलाइजेशन आया है, कॉर्पोरेट टैक्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है और डिजिटलाइज हो गया है। जैसे पहले टैक्स का अलग अलग कैनन रहते हैं, जो कैनन ऑफ कन्वीनियंस जो है वो बहुत बड़ा होता है, और कैनन ऑफ इकोनॉमी ये सब रहता है जिसके अंतर्गत टैक्स रेट कम होना चाहिए, GST में टैक्स रेट कम हो गया है, और अभी हम अगर देखें तो इनकम टैक्स में भी मिला है कि जो लो इनकम है उनको टैक्स फ्री है, टैक्स रेट तो कम है, और आज वाला उनको पता है कि कब टैक्स देना है, क्योंकि इनकम टैक्स वेरी कन्वीनियंट कि हमें पता है कि 1 जुलाई तक उसको रजिस्ट्रेशन करके टैक्स रेट देना है, कब देना है, तो उस हिसाब से इंसान प्लान कर पाएगा। तो डिजिटलाइज और जो ट्रांसपेरेंट हुआ है वो बहुत एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, जिसके वजह से अगर हम इंडिया का अभी इकोनॉमी को देखें तो इसका जो डेफिसिट है वो बहुत कंट्रोल में है, जैसे अभी फिजिकल डेफिसिट 4.4% है, और हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये हाफ हो गया है, जैसे 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएशन हुआ था तो वो 3.5 था, अभी 1.5 है, और जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो बेसिकली शो करता है कि कितना अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, तो क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट घटा है ऑब्वियसली शो कर रहा है कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा है, आज वेल एज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है हमारे कंट्रोल में है, तो इसके वजह से मैं बोल पाऊंगी कि जो कैपिटल है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और उसका मेजर सोर्सेस जो

0: होता है वो टैक्सेशन होता है, और नॉन टैक्स में अलग अलग रहता है फाइन फीस ये सब, लेकिन उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है जितना टैक्स का रहता है। तो टैक्स के मेजर रिफॉर्म के वजह से अभी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो गया है।
1: जी नवजोत जी, आप संयुक्त सचिव हैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, और सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों को जो प्रोत्साहन के लिए योजनाएं लाई हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस पर।
2: ये तो अपने आप में बहुत बढ़िया योजना है। स्टार्टअप में जिस हिसाब से पहले इतना फोकस नहीं था, तो हमारे पीएम सर ने उसको फोकस किया और हर जगह जो स्टार्टअप पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इवन जो पीएमएमवाई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो उसमें जो 10 लाख तक का, मैं दोनों को रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें 10 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री मिलता है,
1: कोलेटरल फ्री गारंटर
2: जी, बिना गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। तो उससे देखिए छोटे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन को, बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन मैम मिल जाता है, दिक्कत छोटे बिजनेसमैन को आती है, छोटे व्यापारियों को आती है। तो उनमें क्या है कि इस तरह का जब कोलेटरल फ्री लोन मिला तो उन्होंने बहुत, उनका भी काम बढ़ा, रोजगार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, तो उससे बहुत फायदा हुआ। और ये आप एक दिन में तो नहीं देखेंगे, मगर धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जैसे आने वाले पिछले 10 वर्षों में, तो ये धीरे धीरे धीरे बूस्ट होता जा रहा है बिजनेस। अब स्टार्टअप में बहुत चीजें आज के डेट में हम देखते हैं कि इंडिया में भी चल रही हैं स्टार्टअप के थ्रू। इनके साथ ही आप स्टार्टअप के साथ देखेंगे मेक इन इंडिया, तो प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया पे भी जोर दिया। तो मेक इन इंडिया से क्या है कि हम बहुत सारी चीजें जो अब इंडिया में बन रही हैं, जो पहले इंडिया में नहीं बनती थी, हम वो भी इंडिया में बना रहे, तो जिससे रोजगार भी पैदा हो रहा है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रोजगार चाहिए ही चाहिए, तो इस तरह की योजनाओं से जब बिजनेस बढ़ेगा, सपोज किसी की दुकान है, किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और अगर उसको काम ज़्यादा मिल रहा है और उसने नया स्टार्टअप के लिए उसको लोन मिल रहा है, तो वो नई नई चीज़ें लगाएगा, नए उपकरण लगाएगा, नए, तो उससे रोजगार भी हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ वो दे रहा है लोगों को, और बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है, तो वो दोनों एंड में फायदा है मैम।
1: जी जी, कई लोगों को ये चिंता होती है क्योंकि ये गारंटर मुक्त ऋण योजना है, तो वापस बैंकों को ये ऋण कैसे सुनिश्चित होगा कि
2: बैंक तो एट द एंड ऑफ द डे साइन कराते ही है, ठीक है, लोन में उसमें कोलेटरल फ्री है, मगर वो जो बैंक का पूरा जो डॉक्यूमेंट साइन हो वो तो ऐसा थोड़ी है कि बैंक पूरा छोड़ ही देता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एड रहता है वो है। और एक चीज है मैम कि कोई भी लोन अगर आप दे रहे हैं तो वो उसको वापस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आज बैंक का ये वो सिस्टम है कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में डिफॉल्ट होते हैं तो वो आपके सिस्टम में दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाला सिस्टम है आज से 50 साल पहले वाला कि आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, फिर आपने कैनरा बैंक से ले लिया, फिर आप बैंक ऑफ इंडिया चले गए। आप एक बार अगर आप उसमें पोर्टल में आप सपोज डिफॉल्टर होते हैं तो वो आपके सिस्टम में पूरा, आप जैसे ही आपका नाम खुलेगा ना, वो उसमें डिफॉल्ट लिस्ट दिखाने लग जाएगा। तो आपका वो, अगर आप वन टाइम फ्रॉड कर रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, नहीं तो आपको वो रिपे करना ही पड़ेगा मैम, और वो आपका डिफॉल्ट जो है वो दिखता रहेगा
1: जी,
2: जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हैं, तो मेरे को लगता है देखिए। और दूसरे एंड में मैम, कभी भी आप लोन दे रहे हैं और लोन से अगर जिसकी सही वो नीयत है तो आप उसमें 2-4-10% केस अलग हो सकते हैं, मगर 90% लोग जब लोन लेते हैं और उनका वो बिजनेस में लगा रहे हैं अब और उससे जो तरक्की कर रहे हैं, तो वो लोन चुकाते हैं मैम। ऐसा नहीं है कि वो लोन लेके और किसी तरह के वो डायरेक्ट आप किसी को फंड देते हैं, उससे तो बेटर ही है कि वो लोन ले रहा है और लोन लेके कमा रहा है और कमाने के बाद वो धीरे धीरे बैंक को भी देता जा रहा है
1: जी। और ये रोजगार, जैसे पहले लोग नौकरी के लिए लालायित रहते थे, लेकिन अब जब ये योजना आई है, बहुत सारे युवा हैं जो अपना रोजगार स्टार्टअप कर रहे हैं। बहुत से हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि IIT से युवाओं ने अपनी शिक्षा ली, लेकिन बाद में वो अपना कोई स्टार्टअप लेकर उद्योग को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और सिर्फ खुद के लिए रोजगार नहीं बल्कि और 100 और लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सहिता जी, आप कैसे देखती हैं इस मुद्रा योजना को?
0: मुद्रा योजना गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है, और 10 लाख तक लोन उनको सैंक्शन होता है। और इस पे जैसे अभी इंडिया का मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, जैसे 68% ऑफ द पॉपुलेशन आर यूथ, इंडिया में, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बिगेस्ट चैलेंज है। तो उसी हिसाब से जैसे मुद्रा योजना जो राइट टाइम में हुआ है, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि हमारा 147 करोड़ आबादी है और उसमें यूथ इतने ज़्यादा है। तो इसीलिए और गवर्नमेंट अभी अगर हमने देखा जाए तो जो जियो पोलिटिकल कंडीशन है, जो मतलब वार चल रहा है, क्राइसिस है इकोनॉमी में, लाइक क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जॉब एंड इन्वेस्टमेंट बहुत है बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारा इनिशिएटिव के बावजूद, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, बहुत सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव टाइम टू टाइम लिया है, जिसके बावजूद इन्वेस्टमेंट एक बिगेस्ट चैलेंज है। उसको प्रमोट करने के लिए राइट टाइम पे ये गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना इम्प्लीमेंटेशन किया है, ताकि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है, नॉट ओनली द जॉब सीकर, दे आर द जॉब क्रिएटर एज वेल, एंड उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बहुत एसेंशियल हो गया है इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। इंडिया अभी अभी मतलब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4.15 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब है, और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ IMF के हिसाब से 6.5% है इकोनॉमिक ग्रोथ, और अभी जो NSSO का नया रिसेंट आंकड़ा आया है उसमें 7.8% है। लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए और जो हमारा 2047 का विकसित भारत का विजन है, तो उसके हमें अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत प्रायोरिटी है।
2: जी मैं तो इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैम,
1: बिल्कुल,
2: जो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी अवार्ड से पहले तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच गया था।
1: जी
2: जी,
1: और हम इसमें और प्रगति की आशा करते हैं।
2: जी
1: जी, जी। अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की चर्चा न करें तो ये चर्चा बेमानी हो जाएगी। नवजोत जी, इस पर
2: देखिए, जन धन योजना तो PM सर की मेरे को लगता है वन ऑफ द मेन योजना है, जिसमें उन्होंने एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया पहले
1: जी।
2: तो ये अपने आप में इसमें बहुत वो थे, लोगों को ये था कि खुलेंगे, आम लोग खुलेंगे, कॉमन लेमैन खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, मगर उन्होंने खोल के दिखाया। और सबसे बड़ा फायदा मेरे को लगता है खुलने के बाद ये है ना, कि जो मिडिलमैन थे, मिडिलमैन इन एवरी रिस्पेक्ट, जो गवर्नमेंट के जो किसी भी लेवल पे जो फंड ट्रांसफर होते थे किसानों को या बाकी सबको, तो वो उसमें वो मिडिलमैन का वो हमेशा रहता था, एक्टिव रहता था, क्योंकि वो सरकारी ऑफिस जाते थे तो वो सरकारी बाबुओं का चक्कर रहता था और बहुत कुछ था। तो अब इससे क्या है कि वो डायरेक्ट फंड उनके खाते में चला जाता है
1: जी।
2: तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि अब किसी भी योजना में वो गवर्नमेंट को किसी मिडलमैन की, किसी बिचौलिए की कहीं जरूरत नहीं है, उन लोगों को भी, वो कॉमन लेमैन जो इंडिया के हैं उनको भी कहीं किसी की जरूरत नहीं है, उनके खाते में पैसे अपने आप किसी भी गवर्नमेंट फंड के अपने आप आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। और एक चीज़ इससे हम एक दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे तो एक बहुत जिनके खाते नहीं थे मैम
1: जी, जी,
2: तो वो
1: बहुतों के खाते उसी वक्त
2: हाँ उसी वक्त खुले, और उसमें हाँ उसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो जो खाते जब खुले मैम, तो खुलने का एक फायदा क्या हुआ ना, पहले एक कॉमन जो हाउसवाइफ है या गांव घर के जो लोग हैं वो पैसे को अपने पास रखते थे, ठीक है। आज जो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंचे, अभी ठीक है 6th में, तो वो पैसा कहीं ना कहीं उनके घरों से 5 साल पहले लोगों ने वो बैंक में डिपॉजिट किया
1: जी।
2: तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम हुई, जो लोगों का पैसा घर में था, तो प्रधानमंत्री जी ने वो पैसे को घर से बैंक में स्विच कराया, ये अपने आप में आज वो पैसा बैंकों के थ्रू इकोनॉमिक, जो घर में पड़ा रहता था तो इट्स वेस्ट, एक तरह से वो वेस्ट था,
0: हो गया सेविंग, एक सेविंग एक एक्टिविटी अमंग वुमेन भी जनरेट हुआ, जो लैकिंग था वो अपने घर में सेविंग तो करते थे लेकिन घर में रखते थे, अभी वो फॉर्मलाइज हो गया इन द सेंस वी कैन से। और सर ने पूरा राइट पॉइंट बोला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पा रहा है, जिसके वजह से ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, और जो ये था कि ट्रांसपेरेंसी हो रहा है एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी भी मतलब बढ़ गया है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी हो गया है उसमें। और जैसे बहुत सारा प्रोग्राम्स डायरेक्टली बेनिफिशियरी को ना जाके किसी और को मिल जाता था, पहले अकाउंट रहता था
3: पहले, जी
0: हाँ, वो बेनिफिशियरी रहता था, ये सब मतलब इरेडिकेट हो गया है। अब बहुत सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत स्मूथली काम कर पा रहा है ड्यू टू जनधन प्रधानमंत्री का जो अकाउंट खुला है।
1: जी जी, और जनधन से अगर सपोज कि मेरे पास कोई खाता नहीं है तो मुझे किसी योजना का लाभ लेने में भी हिचक होगी, जाने में भी हिचक होगी कि मैं उस योजना का लाभ कैसे लूं। लेकिन अगर आज मेरे पास खाता है और मुझे किसी योजना का लाभ चाहिए तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा जाने के लिए और
2: जी, जी, जी।
1: उसके लिए अप्लाई करने के लिए वो योजना
0: मतलब
1: लेने के लिए।
0: पर्सन जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसको बेनिफिट मिलता था,
1: जी
0: इस तरह से बहुत ज्यादा करप्शन के जो है वो
2: चांसेस घटे।
1: जी
0: वो जनधन योजना एक्चुअली दैट इज जाम, मतलब आधार भी है उसमें और जनधन भी है और मोबाइल बैंकिंग भी है।
1: जी
0: तो आधार जो है ये कि नेशनल आइडेंटिटी हो गया है अभी, 144 करोड़ लोगों का अभी आइडेंटिटी है वो आधार के थ्रू, और मोबाइल बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो उससे लोगों को UPI पेमेंट ये सब बहुत डिजिटलाइज हो गया है, जिससे अभी वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन इंडिया को मिला है, एवरी मंथ 18 बिलियन UPI के थ्रू पेमेंट होता है इंडिया
1: जी,
0: में
1: जी।
0: तो फास्टेस्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
2: इसमें तो ऐड करना चाहूँगा कोविड एरा में जब करेंसी में भी लोग डील करने में डरते थे तो समय इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि UPI से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, जब कैश लोग एक दूसरे को देने में डरते थे। कोविड एरा के बाद ऐसा UPI ने तहलका मचाया है कि आप चाहे वो एक नॉर्मल सब्जी वेंडर हो चाहे एक फ्रूट वेंडर हो, उनके यहाँ भी वो पूरा लगा रहता है। और आप और कहीं भी आज देखिए बहुत मतलब कहीं चेंज की प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, लोग डायरेक्ट UPI कर देते हैं और डायरेक्ट उनके खाते में वो, तो ये इट्स अ बिग बूम और इससे हर एंड में फायदा हुआ है, एक बिजनेस से लेके गवर्नमेंट हर जगह लोगों को फायदा हुआ है, हर जगह से आसानी हुई है और आपका सिक्योर है, आप जिसको पैसा भेज रहे इन द फ्लैश ऑफ द मिनट्स उसको पहुंच जा रहा है, तो इट्स रियली
1: जी। और मैंने देखा है कि ये जो लूटपाट की घटनाएं होती थी खासकर पेट्रोल पंपों में
2: जी जी,
1: उन घटनाओं में कमी आई है
2: उन घटनाओं में। बाकी घटनाओं में सपोज हम ये कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम एक बहुत कैश कैरी करते थे, या आप ATM देखिए मैं बैंक के ATMs में लाइन कहीं नहीं रहती है तो वो है।
1: और इसका एक और फायदा है UPI से जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो खाते में जा रहे हैं और ये सरकार के पास हिसाब रहेगा कि किसने कितना कमाया और किसने कितना टैक्स दिया नहीं दिया
2: जी।
1: तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को मॉनिटरी
0: इकोनॉमी बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज ट्रांसपेरेंट
1: जी जी। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए भी कुछ कुछ योजनाएं लाई हैं जो उनके स्तर पर कारगर सिद्ध हो रही हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना।
2: जी इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 6,000 रुपये एनुअली फार्मर्स को दिया जाता है तो ये अच्छी योजना है। हालांकि इसमें एक ये भी है कि कुछ अमाउंट अगर बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके साथ किसान मानधन योजना है ये भी, ये मेरे को लगता है ये उससे थोड़ी बेटर है। 3,000 रुपये जो 60 इयर्स से अबव है उनको,
1: जो प्रॉपर किसान
2: जो प्रॉपर किसान है उनको मिलता है
1: तो पेंशन की राशि
2: जी, पेंशन की राशि टाइप से। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा और प्रमोट भी करना होगा, मेरे को लगता है इसका थोड़ा सा ऐड हो तो बहुत सारे किसान जो इसमें नहीं अवेल कर पा रहे वो भी करेंगे
1: जी जी। क्योंकि किसान इन सुरक्षा बीमा योजनाओं से किसानों को जो एक कवर मिलता है उनके क्रॉप के अगेंस्ट में अगर डैमेज होते हैं किसी भी कारण से, और इस कवर के कारण किसान हिम्मत दिखा रहे हैं खेती करने की, तो उसका लाभ तो
2: मिलेगा एकदम मिलेगा।
0: इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं तो, और नेचुरल कैलामिटीज मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है मतलब फार्मर के लिए, तो फसल बीमा योजना भी एक सिग्निफिकेंट मतलब प्रोग्राम है जो फार्मर्स को हेल्प कर रहा है। ऑल दो सर ने ऑलरेडी बोला कि 6,000 अमाउंट थोड़ा कम है, लेकिन जहाँ पे इंडिया में इतना ज्यादा आबादी है और बहुत लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो थोड़ा भी उनको अमाउंट दे रहा है उनके लिए बहुत यूजफुल।
1: जी जी जी। इसके अलावा एक और योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो 4% पर उनको
0: रेट ऑफ इंटरेस्ट
2: मिलता है।
1: तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी संहिता जी।
0: उसमें जैसे फार्मर है जो जिनको अभी इनपुट कॉस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, तो

0: एक समय पे लोन लेना पड़ता है, फिर उसके प्रोडक्शन के बाद वो लोग उसको सेल करके ये करते हैं। तो ये जो है इसमें उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है, जैसे कि 4%। बाकी अगर आप देखेंगे कोई भी बैंक में तो वो पर्सनल लोन तो बहुत हाई रहता है, बाकी लोन्स कोई भी 7% से कम नहीं है। इस हिसाब से उनको ये बहुत यूजफुल रहता है ताकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टाइमली कर पाए, इनपुट खरीद पाए।
1: और जैसे मैंने देखा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है, इस योजना से किसानों को ये लाभ हुआ है कि वो जो पहले के जो महाजन होते थे,
2: हाँ, जो पर्सनल लोन लेते थे,
1: हाँ, तो महाजनी सिस्टम से छूटने में
2: छुटकारा मिला। इसमें एक और चीज बोलूंगा, पहले किसानों को लोन लेने में भी दिक्कत थी मैम, बैंक इतनी आसानी से लोन भी नहीं देते थे। अब ये है कि चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, पीएम किसान जनधन योजना हो, चाहे ये क्रेडिट कार्ड योजना, इससे अब एक क्या है ना कि किसान भी जाता है तो उसको बैंक को पता है कि अब देना पड़ेगा, वो इजी है
1: जी।
2: सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, अब किसान के लिए भी लोन लेना आसान हो गया है, सिंपल भाषा में हम ये बोलेंगे
1: जी।
2: और इसके अलावा मैम एक पॉइंट, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पीएम सर की योजना में, फेसलेस टैक्स असेसमेंट। इस पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है, मगर पहले गवर्नमेंट को था कि वो कौन सा बंदा आपका ऑडिट करेगा, कौन सा बंदा टैक्स, तो ये जो योजना है ना कि आपका ऑडिट कौन करेगा, आपका असेसमेंट कौन करेगा, ये थ्रू कंप्यूटराइज उनके पास जाता है। हो सकता है रांची का अफसर रांची में नहीं, वो कहीं दूसरे जगह से हो, तो इससे जो वो एक हैरेसमेंट था ना, मतलब ये छोटा स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा है, वो एकदम हैरेसमेंट फ्री हो गया है
1: जी।
2: आज कोई चाह के भी आपको तंग नहीं कर सकता,
1: बस आप अपने पेपर्स ठीक रखें।
2: हाँ, पेपर्स ठीक रखें, पेपर्स तो ठीक रखना ही होगा
1: जी, जी। और ये सारी जो योजनाएं जिन पर अभी हमने बात की, वो सारी योजनाएं डिपेंड करती हैं डिजिटल साक्षरता पर। पहले हम कहते थे कि साक्षर हैं, वो साक्षर है, वो राज्य साक्षर है, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि वो राज्य कितना डिजिटल साक्षर है, डिजिटली। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी नवजोत जी।
2: देखिए, डिजिटल साक्षर से फायदा तो हमेशा ही पहुंचेगा ही, हर कि आदमी कैसे उसमें ये है। डिजिटल आज के डेट में मैम सभी है। अगर हम एक एक हम रोड क्रॉस करते हैं और हम एक देख रहे हैं कि वो डिजिटल साक्षरता और डिजिटल पेमेंट्स एक वेजिटेबल वेंडर्स भी रिसीव कर रहा है, उसको कुछ एक क्यूआर कोड चाहिए और क्यूआर कोड के थ्रू लोग पेमेंट करते हैं, उसमें एक अमाउंट रिसीव होता है तो वो मैसेज आता है और उसके थ्रू वो बैंक में उनके पेमेंट जमा हो रहा है। पहले कैश का उनको एक हेडेक था कि कैश अपने पास रखना है, कैश को कलेक्ट करना है, फिर उनके पास ये एक दिक्कत होती थी कि कैश को कैसे संभालेंगे, अपने पास रखेंगे। अब वो उनका पैसा डायरेक्ट बैंक में चला जा रहा है
1: जी। और एक और योजना है जिससे लोगों को काफी लाभ मिला है, अटल पेंशन योजना। इससे गारंटीड पेंशन स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए। ये स्कीम कितनी लाभकारी होगी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पेंशन की बहुत समस्या थी। जब तक लोग काम कर सकते थे करते थे, और जब उनमें काम करने की क्षमता नहीं रह जाती थी तो वो बिल्कुल खाली हाथ होते थे। तो अटल पेंशन स्कीम योजना जो है वो भी आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त कर रही है।
2: इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ और चीजें इम्प्लीमेंट की हैं, जैसे बहुत तरह के लाइसेंस थे मैम, लेबर लाइसेंस, फूड लाइसेंस, इसमें टाइम फ्रेम रहता था, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है, बहुत ईज कर दिया है। ईज इन द सेंस कि अब पहले वो हर साल होते थे, बहुत सारे लाइसेंस थे, तो इससे आज जो हम देख रहे हैं, हमारी ग्रोथ, हम लोग 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों है, तो बिजनेस में हमें करने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, इतने तरह के लाइसेंस थे, वो जैसे टैक्स के बहुत चीजें जीएसटी में इंक्लूड हो गई 18 तरह के, वैसे ही आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अलग अलग ये करके बहुत सारे जो लाइसेंस थे अलग अलग, उसको उसका टाइम फ्रेम बढ़ाया है, तो इससे इससे मतलब बहुत हेल्प हुई। सपोज फूड लाइसेंस है, पहले उसमें क्या था कि ईयरली आपको हर साल उसमें वो लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, देखिए कोई भी लाइसेंस लेने की जटिलता तो है मैम, तो अब जब उसका टाइम फ्रेम बढ़ गया तो वो अपने आप ऑटोमेटिक घट गया। ऐसी लेबर लाइसेंस था, ऐसी कई प्रकार के लाइसेंस हैं जिनका टाइम फ्रेम गवर्नमेंट ने 1 साल से 5 साल कर दिया।
1: जी जी,
2: जैसे नाप तोल में वेट वाला है तो उसमें भी बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई की गई हैं। तो ये सब करने से बहुत चीज़ें में फायदा हुआ,
1: कई जगह सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू हुए हैं।
2: हाँ, सिंगल विंडो सिस्टम में लागू हुआ है, उससे अपने आप में मतलब बहुत फायदा हुआ कि जो इरेस्पेक्टिव आपको अलग अलग हर जगह जाना पड़ता था, वो गवर्नमेंट की कोई भी योजना शुरू करना है कोई भी चीज़ वो उसको एक ही जगह से कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ एक पॉइंट आकर्षित आपका करना चाहूँगा कि जो पिछले 12 वर्ष में जिस स्पीड से नेशनल हाईवेज बने हैं मैम, जिस स्पीड से रेलवे का अपग्रेडेशन हुआ है, जिस स्पीड से एयरपोर्ट्स बढ़े हैं, पोर्ट्स बढ़े हैं, मेट्रो हुआ है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं।
1: तो हमारे अपने श्रोताओं से यही आग्रह रहेगा कि वो अपने क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक योजनाओं के लिए सचेत रहें, सजग रहें और इन सारी योजनाओं का लाभ उठाएं और साथ मिलकर हम सब आगे बढ़ें। तो आज की परिचर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में आए श्री नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और डॉक्टर संहिता सुचारिता, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची। नवजोत जी, संहिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी का धन्यवाद हमें बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था आर्थिक विकास। परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और श्रीमती संहिता सुचारिता, सहायक प्राध्यापक इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम करकेट्टा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र ने झारखंड के 126 किलोमीटर से अधिक लंबे रांची महुलिया खंड पर सड़क निर्माण कार्य के लिए 214.79 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस परियोजना को रांची और जमशेदपुर के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी राहत बताया। झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित तेतुलिया जमीन विवाद मामले की न्यायिक जांच की निगरानी से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि केवल आशंकाओं के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि एजेंसियों आरोपितों को लाभ पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन से निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत सरायकेला खरसावां समाहरणालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी है। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के तांबा जंगल से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक मूल रूप से तपकरा के दिगरी गांव का निवासी था और वर्तमान में रनिया में किराए के मकान में रहकर वाहन मैकेनिक का काम करता था। प्रारंभिक जांच में तोरपा कॉलेज के समीप स्थित जमीन को लेकर विवाद की बात सामने आई है। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम सुहाना हो गया है। पिछले 24 घंटों में रांची के कांके क्षेत्र में सर्वाधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज गर्जन की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आयु सुनी कार्यक्रम आओ साथ चलें। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक चर्चा, विकास की राह पर बढ़ते गांव, एक भेंट वार्ता होगी, आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना और सरकारी योजनाओं का योगदान। भेंट वार्ताकार हैं सुजीत कुमार नायक, भेंट करता है सिंधु मिश्रा, कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की और प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज कार्यक्रम के आरंभ में हम आपसे चर्चा करेंगे विकास की राह पर बढ़ते गांव के विषय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है, आज भी देश की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गांव केवल कृषि उत्पादन के केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों के संवाहक भी हैं। किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसके गांव विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त हों। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनके परिणाम स्वरूप गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल तकनीक और आजीविका के क्षेत्र में हुए सुधारों ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा प्रदान की है। श्रोताओं, ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा महत्व है। इसका अर्थ केवल भौतिक सुविधाओं का विस्तार नहीं है बल्कि लोगों के जीवन में और उसके स्तर में समग्र सुधार लाना है। जब गांवों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तब ग्रामीण समाज आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनता है। इससे शहरों की ओर पलायन कम होता है और साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। इसलिए गांवों का विकास देश की आर्थिक प्रगति का आधार माना जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रोताओं, पिछले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हजारों गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिली है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी जा सकती है। अधिकांश गांवों में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है जिससे घरेलू जीवन के साथ साथ छोटे उद्योगों और व्यवसायों को भी बढ़ावा मिला है। सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। श्रोताओं, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और अब कार्यक्रम में हम बातें करेंगे कृषि की। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि यंत्रों के उपयोग ने खेती को अधिक उत्पादक बनाया है। किसान अब मौसम संबंधी जानकारी, बाजार भाव और कृषि सलाह डिजिटल माध्यमों से प्राप्त कर रहे हैं। जैविक खेती, बहुफसली खेती, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं। कृषि उत्पादों में प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। श्रोताओं, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किसानों को सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर मिल रहा है जिससे उनकी बाजार तक पहुंच और सौदेबाजी

0: की क्षमता मजबूत हुई है। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूहों ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। छोटे छोटे बचत समूहों के माध्यम से महिलाएं आज स्वरोजगार, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन और अन्य आय वर्धक गतिविधियों से जुड़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। श्रोताओं, आपसे बातें करने के लिए और भी विषय हमारे पास हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे और वो है अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर विकास कार्य। गाँव की छवि बदलने में प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उन पर आइए आपको महत्वपूर्ण जानकारी करवाते हैं। और आज इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं श्री सुजीत कुमार नायक, जो राहे प्रखंड के ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं इस प्रखंड के विकास योजनाओं पर।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार
2: जी। नमस्कार मैम।
1: मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं, आप उनके समक्ष अपना परिचय स्वयं दें।
2: जी जरूर मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि मैम आपके कारण आज मैं आकाशवाणी के लिए भी अपना एक आवाज दे पा रहा हूँ, या इस पटल पे मैं आ पाया हूँ जहाँ पर कुछ श्रोता बाकी लोग भी मुझको आवाज सुनकर जान पाएंगे। मैं आपका आभारी हूँ। और मेरा नाम सुजीत सागर नायक हुआ। मैं वर्तमान में राहे प्रखंड अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मुझको अतिरिक्त प्रभार में सिल्ली प्रखंड भी आवंटित किया गया है। मैट का एग्जाम लिखा था अपने पिताजी के दबाव से, तो मैट क्वालिफाई करने के बाद मैं बीआईटी मेसरा से मैनेजमेंट का पढ़ाई पूरा किया और उसके बाद हमारी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी पे लगी थी, एक्सपोर्टिंग डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिंग हाउस, फिर वहां से फिर रिजाइन करके कुछ पारिवारिक समस्या के कारण आना पड़ा, क्योंकि मैं इकलौता हूँ और मेरे बड़े भैया और छोटा भाई एक्सपायर कर चुके थे, मम्मी हार्ट की पेशेंट थी और पापा हाईकोर्ट में जॉब में थे, तो बाहर ज्यादा मतलब मेरा रहना इन लोगों को खलता था। तो फिर मैं छोड़कर आया और इस विभाग में फिर मैं 2007 का जो कमिश्नरी से बहाली निकली उसमें अपीयर हुआ, तो ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों की दुआ समझिए मैं प्रखंड में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पे बहाल हुआ और उसके बाद से मैं लगातार विभिन्न प्रखंडों में स्थानांतरित भी हुआ और अंततः अभी वर्तमान में यहाँ पर कार्यरत हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपके परिचय को सुन के लग रहा है सुजीत जी कि आप बेहद संघर्षशील रहे और उसके बाद जो आपने इस पद को पाया है, आप इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं?
2: मैडम अभी तो मैं सर्वप्रथम शुक्रिया अदा करूंगा ऊपर वाले का कि मुझको ऐसे जगह पे मतलब सेवा करने का मौका मिला है जहाँ पे ग्राउंड लेवल से लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को समझने का, उनके समस्याओं को समझने का और उनको किस तरह से मैं ऊपर लेवल तक ले जा सकता हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनके सामाजिक स्थिति को समझते हुए, तो वो समझने का मौका मिला। और भरसक मैं प्रयास करता हूँ कि ग्रामीण जनताओं का जो भी समस्या है उनको मैं सुनूं और उनको मैं अवगत कराऊं कि सरकार आपके लिए किस हद तक मतलब आपकी समस्याओं को, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत है और मैं जस्ट एक माध्यम हूं उन ग्रामीण जनता और सरकार के बीच का कि सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सेवाएं हैं उनको मैं निशुल्क अपने ग्रामीण जनताओं तक पहुंचा सकूं, उनको लाभ दे सकूं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं, जिससे कि हमारा एक गांव, हमारा एक पंचायत, हमारा प्रखंड से होता हुआ हमारा राज्य और हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर पहुंच सके।
1: बहुत बड़ी बात आपने कही। और सुजीत जी, जहां तक प्रश्न है एक गांव का, एक प्रखंड का विकसित होने की बात है, तो विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं लागू तो जरूर की गई हैं, लेकिन जो धरातल पर उतारने की बात आती है तो उसमें आप

0: लोग उन लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, उन लोगों को अपने परिवार के बंधन से, अपने घर के मजबूरियों से उठाकर उस पटल प्रखंड और पंचायत तक लाकर उनको जागरूक करते हुए उनको लाभ दें, ताकि उस लाभ को जानने के बाद स्वतः भी वो जागृत हो जाएंगे और अगल बगल के जो ऐसे वंचित परिवार है वो भी जागृत होंगे और उन तक भी लाभ पहुंचाया जा सकेगा। प्रथम तो होता क्या है कि आप जैसा कि जानते हैं, ना राज्यसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्राम सभा तक प्रत्येक व्यक्ति पहुंचे, क्योंकि कोई भी बात अगर ग्राम सभा से होकर हमारे तक नहीं आती है तो हम लोग उसको मतलब किसी योजना के लाभ में या किसी बात के लिए उस ग्राम सभा के बिना अनुशंसा के कुछ भी करने से हम लोग मतलब अपना एक दायरा सीमित हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्राम सभा का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो और ग्राम सभा में ग्रामीण जनता, माँ बहन, भाई बहन जो भी हैं वो पहुंचे और पहुंचकर अपनी बातों को रखें, और जो वंचित परिवार हैं वो अगर ऊपर तक नहीं दौड़ पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो अपने गांव में तो बात को रख पाएंगे। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वो वंचित परिवार किसी भी समय अपना समय निकाल के ग्राम सभा तक पहुंचे, जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ के लिए अपना नाम को दर्ज कराएं ग्राम सभा की पंजिका में, और ताकि वो ग्राम सभा की पंजिका फिर ग्राम प्रधान मुखिया से होते हुए प्रखंड तक आए और संबंधित विभाग से उस व्यक्ति को लाभ से आच्छादित किया जा सके। तो हम लोगों का बिल्कुल यही प्रयास रहता है कि ग्राम सभा तक सभी लोग पहुंचे।
1: एक बात और देखी जाती है, जहां तक विशेषाधिकार की बात है, यानी जिस पंचायत, जिस प्रखंड की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उन जगह पर आज की स्थिति में, आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो योजनाएं अभी कार्यान्वित की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि कहां तक ये सफलतापूर्वक धरातल पर उतर पाया है?
0: जी बिल्कुल मैडम, शुरुआत में तो कहा जाएगा कि जो सो मनरेगा 2005-06 से शुरुआत जो हुई थी, उसके बाद आप देखेंगे कि आज ग्रामीण परिवेश का रीढ़ बनकर रह गया है। जैसे एक मैं ज्वलंत उदाहरण दूंगा, 2020-21 में जब कोरोना से पीड़ित थे लोग, बहुतों का प्राइवेट नौकरी छूट गया, बहुत मजदूर और ये नीचे स्तर के जो लोग थे, जो किसी ईंट भट्टे में या फिर कहीं और जो काम करते थे या फिर प्राइवेट जॉब में जो भी अच्छी कंपनी में थे, उन लोगों को भी जो सो मजबूरी वश या किसी कारणवश जो सो वहाँ सुविधा नहीं प्रदत्त होने लगी, तो उस महामारी के समय भी लोग अपने गांव, अपने जिला, अपने घर तक पहुंचे, और जब वहां पे पहुंचे तो उनके पास खाने के लिए जब प्रॉब्लम आया तो उस समय भी मनरेगा, वैसी स्थिति में भी सरकारी योजनाएं खड़ी रही वहां पे उन लोगों को मतलब स्वागत के लिए, उन लोगों को लाभ देने के लिए, ताकि वो बेसहारा बेघर ना हो। उस स्थिति में भी जब हुआ तो समझ सकते हैं कि विकट से विकट परिस्थिति हो या फिर जब सामान्य जनजीवन हो, दोनों स्थिति में सरकार की योजनाएं ग्रामीण जनता को हमेशा सहारा देने की काम कर रही है। वर्तमान में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ वर्गीकृत किया गया है योजनाओं को, जैसे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, इन वर्गीकृत रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर किया जाता है। जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत आप देख रहे होंगे हर एक क्षेत्र में, गांव में, टोला में बड़ा बड़ा पैच को चुना जा रहा है या फिर ऐसे जगह को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कि पहले खेती नहीं हुआ करता था, पथरीली जमीन थी, वैसे जगह पे कुछ साइंटिफिक तरीके से आम के पौधा, मिश्रित फलदार पौधा, लीची, पपीता, अमरूद, ऐसे ऐसे फल वगैरह का जो खेती किया जा रहा है वहाँ पे, तो आज वहाँ पे स्थिति देखिए, जो कभी बंजर भूमि हुआ करती थी आज वहाँ पे फल और पौधे वृक्ष लहलहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो तरफा काम कर रहा है। पहला तो जो व्यक्ति वो वंचित जो था भूमि, वहाँ पे कुछ फल उग रहे हैं, उस फल से ग्रामीण जनता को लाभ हो रही है, उनका इनकम बढ़ रहा है। दूसरी बात, जमीन का जो कटाव हो रहा था वो कटाव भी रुक रहा है, सॉइल कंजर्वेशन का बहुत बड़ा इसमें लाभ हो रहा है।

0: में बहुत सारा बदलाव आप देख रहे होंगे। कुछ वर्षों तक हम लोग देख रहे थे कि बचपन में देखते थे कि एक ही मौसम में जाड़ा गर्मी बरसात तीनों दिखाई पड़ता था, लेकिन कई वर्षों तक जो वो दिखने के लिए हम लोग लालायित थे, जो नहीं दिख पा रहा था। अक्सर होता क्या था कि अगर 19 जून से 15 जून से मॉनसून आ रहा है हमारे यहाँ, हमेशा से जो परंपरा था आने का, तो वो दिखाई पड़ता था कि जुलाई में फिर आती थी मॉनसून। और उसके बाद जो ये क्या था, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों था? बस यही वृक्ष का कटाव से, डिफोरेस्टेशन जो बोलते हैं उसके कारण। लेकिन सरकार की एक योजना जो चली बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके आधार पर जो बहुत संख्या में पौधा रोपण किया गया, और वो भी फलदार पौधों का रोपण किएगा, जिसको एक एकड़ में, दो एकड़ में, तो कहीं जो पांच सात लाभों को मिला के 5-7 एकड़ में एक साथ किया गया। आज देखिए कि बाहर से जो आम का हम लोग इंतजार करते थे, आज आम्रपाली से लेके लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम, ये सब हमारे लोकल एरिया में मिल रहे हैं। आप खूटी में इसका शुरुआत किया गया था, जाकर देखिएगा अभी, तो हमारी दीदी लोग उसमें जुड़े हुए हैं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। उसी तरह रांची के बहुत सारे रूरल एरिया हैं जिसमें भी दीदी और बागवानी मित्र सभी जुड़े हुए हैं, और हम सभी मिलकर जो साथ उनको दे रहे हैं, समय समय पे पौधा देना, उनपे कीटनाशक देना, उर्वरक देना, ये सब जो काम हम लोग कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से, तो सबको एक उत्साहित तरीके से काम कर रहे हैं लोग। उसमें क्या है कि अभी कुछ दिन बाद हम लोग एक आम उत्सव करने वाले हैं, जैसे प्रत्येक प्रखंड में। उसमें क्या होगा कि अभी तक जितने फल का उत्पादन हुआ है, मतलब लगे हुए हैं फल वृक्षों में आम के, तो उसके लिए हम लोग एक वेंडर का सिलेक्शन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करके बुला रहे हैं उनको, और गांव से उस बागान से डायरेक्ट वो उठाव करके अपना जो डीलर को देंगे या फिर रिटेलर को देंगे, वो वहां से करेंगे। तो किसान को इसमें क्या चीज फायदा हो रहा है कि उनको 3 महीने का तो रोजगार मिल ही जा रहा है अपने ही बागवानी में, प्लस उनको जो क्या है कि ये जो फल वो खरीद के कभी खाते थे या तो खरीद के खाने के भी जिनके पास पैसा का अभाव हुआ करता था, वो आज बाकी लोगों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, है ना, और उसमें उनका इनकम भी हो रहा है। इससे क्या है कि एक पोषक तत्व की भी प्राप्ति हो रही है उनको, विटामिन को भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो फल उत्पादन कर रहे हैं वहां पे मिश्रित खेती भी कर रहे हैं लोग। मिश्रित खेती मतलब 15 फीट की दूरी में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी जो है 15 फीट की दूरी है, वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, तो उसके बीच में जो जगह बच रहा है उसमें करेला कर रहे हैं लोग, भिंडी कर रहे हैं लोग, राहर कर रहे हैं, फिर आपका ये कभी कभी छोटा छोटा शकरकंद वगैरह जब भी कर रहे हैं, जिससे कि पेड़ से ऊपर ना जाए और पेड़ में भी लता ना जाए और जमीन के नीचे ही वो सब रहे, और उससे इन लोगों को साग सब्जी का भी उत्पादन हो रहा है।
1: यानी सुजीत जी, कुल मिला के अगर कहा जाए कि हरित ग्राम योजना हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए बेहद लाभकारी योजना है,
0: बेहद लाभकारी,
1: और देखा जाए तो ये स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर ये ले जा रहा है
0: और वायुमंडल को भी सुधार रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में जब विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है, युवा किस प्रकार रोजगार से जुड़े हुए हैं, या फिर अगर बेरोजगारी है तो फिर अन्यत्र भटकने के लिए भी युवाओं में देखा जाता है कि शहरी चकाचौंध के कारण वो अन्यत्र भी भटक जाते हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे और अपने पंचायत में युवाओं की क्या स्थिति है इसके बारे में भी बताएं।
0: जी मैडम, एक बेहद ही मतलब किसी भी अच्छाई और बुराई के, अगर अच्छाई बोलेंगे तो उसका भी दो पहलू होता है, बुराई कहेंगे उसका भी दो पहलू होता है, लेकिन अभी अभी जो वर्तमान परिवेश में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ युवा ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम मेट्रोज में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेट्रो में जाएंगे कुछ एक दो के चक्कर में पड़ के बाकी लोगों को भी वो मोटिवेट करके, जैसे खेती बाड़ी से वो निपट गए और कार्य से निपट गए, तो वो क्या करते हैं शौकिया तौर पे भी ईट भट्टे में या किसी कंपनी में, फैब्रिक कंपनी हुआ या कुछ और भी कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी हुआ, वो साउथ की ओर जाते हैं पूरा समूह में बना के, लड़के लड़कियां, ठीक है, तो वो लोग एक आउटिंग का मजा लेने के लिए ही जाते हैं, समझिए, अन्यथा आजकल गांव में तो सालों भर के लिए लोगों को काम मिल रहा है। और सबसे बड़ी एक विडंबना बोलिए या क्या बोलिए, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, कि सरकार हर तबके के लोगों को हर तरह की फैसिलिटी सालों भर दे रही है। जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसमें 5 लाख तक की जो है सो लोगों को ये कोई भी बीमारी होने से सरकार निःशुल्क मुफ्त इलाज हो रहा है सरकार की ओर से। फिर जो है सो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, फिर जो है सो राशन जो सबको मिल रहा है। तो ये और ऊपर से जो है तो कि शिक्षा नीति जो है जिसमें अगर कोई बच्चा एक ड्रॉप आउट हुआ तो वीडियो सर से लेके पूरे जिला के महकमे तक हल्ला हो जाता है कि जो बच्चा मैट्रिक पास करने के बाद ड्रॉप आउट क्यों किया, क्यों आगे पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे सभी लोग पूरी कायनात पड़ जाती है सरकारी तंत्र कि बच्चा तुम जाके एडमिशन लो, तुमको स्टाइपेंड देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको साइकिल देंगे, चलो पढ़ाई करो। तो ऐसा स्थिति में भी अगर जुआ या युवती जो तो विमुख होंगे तो ये तो दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि सरकार राशन पानी सब चीज घर बैठे मिल रहा है, किसी युवक की माँ को जो है वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, उसको राशन तो हर महीने मिल ही रही है ना। फिर स्वास्थ्य के लिए आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का बीमा योजना है, सरकार ही दे रही है। तो इन लोगों में कहीं ना कहीं एक विमुखता आ रहा है काम के प्रति। वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जो सो बैठ जाते हैं कहीं पे और जुआ खेलने लगते हैं। लेकिन गांव की महिला है सो बच्चों के भविष्य के लिए, अपना परिवार के भविष्य के लिए वो सालों भर काम करती है।
1: आप हम और सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड राज्य जो है वो एक नस्ल प्रभावित राज्य भी माना जाता है, और इसमें देखा जाता है कि हमारी युवक और युवतियां या किशोर जो महिला और पुरुष वर्ग है वो या तो कहा जाए कि जागरूकता की कमी होने के कारण, अशिक्षा की वजह से या फिर गरीबी की वजह से, और युवाओं में रोजगार की कमी होने की वजह से वो इन संगठनों में जाकर शामिल हो जाते हैं और गांव से परिवार से दूर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो मुख्यधारा से जुड़कर रहें, गांव में रहें और विकास योजनाओं को सफल बनाने में अपना योगदान करें?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब भी पता नहीं मैं कितना सटीक दे पाऊंगा, वो तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर भी जो गाँव से जुड़े होने के कारण मैं जान रहा हूँ कि बहुत बार पहले जो हुआ करता था नक्सली में जो शामिल होते थे वो एक्चुअली होते थे कि किसी के सताए हुए, किसी के दबाए हुए होते थे, तो वो अपना पनाह ढूंढने के चक्कर में उनसे पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल स्थिति बदल चुकी है, आजकल इसलिए बदल चुकी है कि अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को सही समय पे इलाज नहीं मिला तो पूरा जिला के प्रशासनिक तंत्र हिल जाता है कि नहीं उसको जो सो बीमार है और उसको सुविधा क्यों नहीं मिला। इसलिए सारे लोग जागरूक कर जानते हैं कि जो तो वो सही जगह पे किसी सरकारी अस्पताल में पहुंचेंगे या फिर डीसी सर के नॉलेज में आ जाएगा कि उनका कोई देखभाल नहीं किया। तो जानते हैं कितने सरकारी लोगों का नौकरी चला जाएगा या सस्पेंड हो जाएंगे। तो सारे लोग जगे हुए हैं, बस जागने की जरूरत है हमारे युवाओं को जो गांव में के परिवेश में है। उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है सरकार की ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से। इसीलिए मैं उन लोगों को कहूंगा कि पढ़ाई के लिए भी जब सरकार तत्पर है आपको पढ़ाने के लिए, उन लोगों को सबको पूरी कायनात है उनके साथ, तो उनको हमेशा समाज के मुख्य धारा में रहना चाहिए, हमेशा कानून के साथ रहना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो आजकल इतना सारा तंत्र मतलब जागरूक है कि उसके साथ गलत होने नहीं देना चाहता है। जैसे विधिक सेवा से आप झालसा डालसा है, फिर आप देखिए कि जो सो पीएलवी प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत में पीएलवी है, पारा लीगल वॉलंटियर्स, मतलब कहाँ पे किसके साथ अन्याय हो रहा है उसको देखने के लिए कानून की भी आंख चारों तरफ है, प्रशासन की आंख है। आप देखिए कहीं पर भी किसी के साथ कुछ दिक्कत हुआ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिर जो तो महिला समिति की दीदी लोग जागरूक हैं, फिर आजकल तो एक छोटा सा भी शिकायत प्रखंड से जिला तक ना जाए सोच के वीडियो सीओ से लेके पूरे प्रशासनिक तंत्र हमेशा चौकाना रहते हैं। तो मैं कहीं भी नहीं सोच सकता हूँ कि कहीं से कोई कमी हो रही है, बस युवाओं को खुद को जागने की जरूरत है और कहीं पे कोई दिक्कत है तो किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। हमेशा प्रखंड और पंचायत कार्यालय हमेशा खुला रहता है, अपनी समस्याओं को आकर वहाँ पे रखें, निश्चित ही उनको सही दिशा दिखाया जाएगा, निश्चित ही उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, कोई लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। जो लाभ से वंचित रहेंगे तो हम लोगों की नाकामी होगी अगर हम तक पहुंच रहे और नहीं दे पाए तो, और हम लोग कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करते हैं पूरे तंत्र की जो तो किसी को हम लोग किसी तरह से वंचित रख पाए।
1: बिल्कुल सही बात है। और मेरी जहाँ तक समझ है कि अगर हमारी सरकार आपके द्वार तक अगर पहुंच रही है और आपको विभिन्न योजनाओं के तहत आपको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, तो हमारी जागरूकता भी अपेक्षित है और सरकार ये भी चाहेगी कि हम इसमें उनका पूरा पूरा सहयोग करें।
0: जी बिल्कुल। अभी सरकार आपके द्वार जो बोले मैडम, उस विषय पर भी मैं कहना चाहूंगा
1: बिल्कुल, हाँ।
0: कि अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम भी सरकार चलाई,
1: हाँ,
0: जिसमें
1: हाँ।
0: क्या होता था, प्रत्येक पंचायत में सरकार की पूरी टीम पूरे अपने मशीनरी के साथ पहुंचती थी और वो तिथि पहले से घोषित हुआ करता था डीसी स्तर से, डीसी सर के स्तर से, और वो फिर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को प्रखंड से जो तो सूचना दी जाती थी, पत्र दिया जाता था, इतने तारीख को आपके पंचायत में जनता दरबार लगेगा। ग्रामीण परिवेश के लोग उसको जनता दरबार कहते हैं, लेकिन उसका नाम था आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। मतलब जो वंचित परिवार हैं किसी भी योजना का लाभ लेने से, तो उनके लिए हम लोग पूरे उनके पंचायत तक पहुंचते थे, और वो भी एक महीना पहले से प्रचार प्रसार करने के बाद, ताकि जो वंचित हैं वो अपने प्रखंड तक नहीं आ पाते हैं तो पंचायत भवन में आएंगे और वहां पे हैंड टू हैंड जो समस्या उसको लिखाएंगे, इनरोल कराएंगे, और वहीं पे त्वरित उनका निष्पादन होता है, त्वरित, और उसका ऑनलाइन एंट्री भी होता है। ऑनलाइन एंट्री को हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज्य स्तर पे देखते हैं, उनके विभाग के सचिव देखते हैं, फिर जिला स्तर पे हमारे डीसी सर देखते हैं, मतलब हर विभाग का अपना दायित्व बटा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार में भी बहुत लोग आके लाभान्वित हुए हैं।
1: बहुत बड़ी बात है। और सुजीत जी, मैं समझती हूँ कि जितने भी श्रोता अभी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, आपने जितनी भी बातें आज कार्यक्रम में रखी, जितनी भी योजनाओं के बारे में बताया, विशेषकर मैं बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में जो आपने बताया, काफी विस्तार से उसकी जानकारी दी, बेहद लाभकारी योजना है और हर प्रखंड में एक ऐसा कार्यालय बना हुआ है जहां लोग इससे संबंधित जानकारी स्वयं जाकर ले सकते हैं। श्रोताओं को आपकी बातों से लाभ जरूर पहुंचेगा। सुजीत जी, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, अपने विचारों से हमें अवगत कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी धन्यवाद, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मैडम।
2: बेहद महत्वपूर्ण बातचीत थी और इस बातचीत के माध्यम से हमने जानकारी हासिल किया कि प्रखंड स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किस तरह ग्रामवासियों तक पहुंच रहा है। श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। इस कार्यक्रम का हमेशा यही उद्देश्य होता है कि महत्वपूर्ण और विभिन्न जानकारियों के साथ हम आपको अवगत कराएं और इन जानकारियों को हासिल कर आप तक लाभ पहुंच सके। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें विदा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। आपसे थोड़ी ही देर में यानी 4:35 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक। शाम 6 बजे आप फिर सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। छह बजकर तीस मिनट पर होगा कार्यक्रम हमारी दुनिया। शाम 7 बजे आप सुनेंगे

ये प्रादेशिक समाचार 7:15 पर होगा। कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा आज उराव भाषा में चर्चा का विषय होगा, परिश्रम से ही सफलता संभव एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कुछ फिल्म संगीत एवं 8:10 पर होगा एक विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

रात्रि 10 बजे हम फिर लौटेंगे कार्यक्रम सुनहरी यादें के साथ। 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत, कलाकार होंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट। 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से एवं 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर हमारी मीडियम वेव की ये सभा समाप्त हो जाएगी। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अगला कार्यक्रम सांस सरगम बस थोड़ी ही देर में।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आशिकी 2 से।

आशिकी टू से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत तुलसी कुमार एवं अरिजीत सिंह के स्वरों में, शब्द रचनाएं शाद कामिल की एवं संगीत जीत गांगुली का। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म एजेंट विनोद।

अरिजीत सिंह एवं जॉय के सुर में आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत फिल्म एजेंट विनोद से, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की एवं संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से।

आतिफ असलम के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत अजब प्रेम की एक अजब कहानी से, संगीत प्रीतम का, शब्द रचना इरशाद कामिल की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म बंटी और बबली से।

0: बंटी और बबली फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत सोनू निगम एवं महालक्ष्मी अय्यर की स्वर में, शब्द रचना गुलजार की एवं संगीत शंकर एहसान लॉय का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में कथित त्रुटियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता मैपिंग का स्तर कम है। जामताड़ा के उदलबनी स्थित वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण ने बुजुर्गों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, आधार कार्ड निर्माण किया गया। लोहरदगा समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने 25 जून तक अनुदानित बीजों का 100% वितरण सुनिश्चित करने, लंबित आवेदनों के शीघ्र सत्यापन और केसीसी लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए। पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र में पूर्व माओवादी जगनारायण यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं। जांच में सामने आया है कि शराब पीने के दौरान हुए विवाद और पुरानी रंजिश के कारण आरोपियों ने मारपीट के बाद पत्थर से कूच कर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी गचाई बासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश को। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर समय होगा कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। संध्या 7:00 पर रिले किए जाएंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संध्या 7:45 पर समय होगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। रात्रि 8:00 हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे न्यूज़ 9:00 रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी न्यूज रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर सम्पन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है एक ही गायक मुकेश के द्वारा स्वरबद्ध किए कुछ फिल्मी गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म रजनीगंधा से। गीतकार योगेश, संगीतकार सलील चौधरी, गायक कलाकार हैं मुकेश।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत, बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश को। और अब सुनते हैं ये संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गायक कलाकार हैं मुकेश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी का। फिल्म सफ़र का ये गीत बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और अब सुनवाते हैं मुकेश के स्वर में फिल्म कभी कभी का ये गाना।

0: श्रोताओं, फिल्म कभी कभी के इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं।
1: पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल में।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र स्वय का जोहार। श्रोता, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के संबंध में और मनोरंजन करेंगे हो लोकगीत से और भेंटवार्ता के माध्यम से भी हम जानकारी लेंगे वर्तमान समय में जो मौसम है धान या अरहर की खेती का। एक महिला किसान से हम अरहर की खेती के संबंध में हम जानकारी लेंगे और कार्यक्रम के अंत में हम पुनः मनोरंजन करेंगे पंच परगनिया लोकगीत से। श्रोताओं, भारतीय संविधान सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था संचालित करने का दिशा निर्देश देती है और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना इसी का परिणाम है। इस देश में अनुच्छेदों के अनुसार जनजातियों को परिभाषित किया गया है और उन जनजाति समुदायों के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा या भारत सरकार के जनजाति उपयोजना जिसे SSA या TSP प्लान, ट्राइबल सब प्लान कहा जाता है, इस योजना के तहत विशेष सहायता की जाती है और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम जिसे हम PAMAGY जिसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कहते हैं इसी का एक परिणाम है। इस योजना के तहत जनजाति आबादी वाले गांव में जहां 50-500 से अधिक रहते हैं जनजाति समुदाय या 50% से अधिक यदि उस गांव में जनजाति आबादी रहती है तो उस गांव के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 22 लाख प्रति गांव को देने का प्रावधान है और इस राशि का उपयोग कर जनजाति समुदाय वाले गांव अपना सर्वांगीण विकास कर सके और समाज के मुख्य धारा में आकर एक गरिमामय जीवन जी सके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत प्रमुख योजनाओं को 8 क्षेत्रों में किया जाता है काम, जैसे कि सड़क कनेक्टिविटी यानी एक सड़क से दूसरे सड़क का पहुंचना या मुख्य सड़कों तक उसका जाल पहुंचाना ताकि समाज के लोग आवागमन में उन्हें असुविधा न हो, अपने यदि उत्पादन है तो बाजार तक वो ला सकें, जिलों तक ला सकें। दूर संचार व्यवस्था यानी इंटरनेट, मोबाइल, स्कूल, आज वैश्वीकरण के इस युग में कोई भी गांव इन सुविधाओं से अछूता ना रहे इसका प्रयास है। आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनः निर्माण करना, पेयजल सुविधा सभी गांववासियों को मिले इसके लिए इस योजना के तहत कई कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं। जल निकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की बीमारियां जल जमाव के कारण होना शुरू होता है, इसके लिए जल निकास का प्रावधान भी इस योजना के तहत किया जा सकता है और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन या कचरे प्लांट के माध्यम से हम जैविक खादों का निर्माण कैसे कर सकते हैं इस योजना के तहत इसका हम लाभ ले सकते हैं। श्रोताओं, इस योजना के तहत पूरे देश में 36,428 गांव को चयनित किया गया है और झारखंड में भी प्रत्येक जिले के लिए चयनित गांव है
इसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी हमें अपने प्रशासनिक विभागों से संपर्क कर लेनी चाहिए, तथा अपने गांव के लिए जो केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजना लाई है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसका मकसद को हम पूरा करने में उनका साथ दे सकें। जब तक हमारा गांव आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, तब तक हम भारत देश की आत्मनिर्भरता को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम जानकारी लें और उस योजना में हम सहभागी बने। इस योजना के तहत समाज को एक सामाजिक न्याय प्राप्त होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं अभी हम मनोरंजन कर रहे थे हो लोकगीत से। इस लोकगीत के बाद आइए हम महिला किसान से अरहर की खेती के संबंध में जानकारी लेते हैं।
1: कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, आज हम जानकारी लेंगे एक महिला किसान से कि वर्तमान समय में खेती करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमारे युवा आज के समय में चेन्नई, गुजरात, बेंगलोर या उन राज्यों की ओर जा रहे हैं खेतों को छोड़ करके। यदि हम खेतों को छोड़ते हैं या खेती नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, और वर्तमान समय में ये महिला क्या क्या कर रही है उसके संबंध में भी जानकारी लेते हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
2: जोहार।
1: आपका शुभ नाम?
2: मैं संयोगिता सोय।
1: अच्छा, तो संयोगिता जी, आप इस समय क्या कर रही हैं गांव में?
2: मैं खेती करती हूँ, खेती किसान हूँ। मैंने फल वृक्ष लगाए हैं और चावल दाल, इन चीजों का खेती करते हैं।
1: तो मौसम के अनुसार, क्योंकि खेती करने की बात आती है, तो आपके खेतों में पानी का क्या सुविधा है?
2: मेरे पास तालाब है।
1: अच्छा, तालाब है।
2: तालाब है, इसलिए हमको पानी का असुविधा नहीं होता है।
1: अच्छा, ये तो आपका खेतों में देख रहे हैं अमरूद है, आम है, ये कई कलमी आम सब है। आज के समय में गांव से कई युवा या महिलाएं भी बाहर जा रहे हैं और खेतों को छोड़ रहे हैं, क्या खेती करना छोड़ देना चाहिए, आपके क्या कहती हैं?
2: देखिए, सबसे पहले तो भारत खेती प्रधान देश है, यहाँ पर खेती होना ही चाहिए और जिनके पास जमीन है उनको खेती करना ही चाहिए। किस लिए कि अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? नौकरी करके आप पैसा तो कमाते हैं, खाते तो अनाज ही हैं। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो अनाज शहर तक पहुंचेगा कैसे?
1: नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम बाहर देशों से, विदेशों से हम लाएंगे, हमको खेती करने की क्या जरूरत है?
2: विदेशों से अनाज आता है, लेकिन इस तरह करने से क्या होगा, हम लोग गुलाम बन जाएंगे
1: आर्थिक रूप से
2: गुलाम बन जाएंगे। वो अपना मनमाना दाम लगाएगा और जिस प्रकार श्रीलंका में हुआ कि उन लोगों को अनाज और ये नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो लोग डिपेंड थे बाहर देश से आने वाला अनाज पर, वो लोग निर्भर थे। लेकिन ऐसा करने से हम लोग गुलाम हो जाएंगे, हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे।
1: अर्थात आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खेती तो करना ही पड़ेगा, तभी हम शायद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्या हमारा देश गुलामी से पहले आत्मनिर्भर रहा होगा?
2: बिल्कुल रहा था, खाने पीने का देश को कोई कमी नहीं था, भले बाहर कुछ दूसरे देश की तरह नहीं कर पा रहा था, लेकिन खेती तो बहुत बढ़िया था तब भी। लोग सोने का चिड़िया कहलाता था भारत,
1: क्योंकि यहाँ से मसाला जैसे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, हल्दी जैसी, मोर पंख जैसे चीजें हैं, बाहर मतलब
2: जाता था।
1: तो वर्तमान समय में आप जो खेती करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या की तैयारी कर रहे हैं अभी आप?
2: अभी मेरा खेत तैयार है रहर का खेती के लिए।
1: अच्छा, रहर का खेती के लिए, तो ये रहर का खेती का समय अभी उपयुक्त है क्या?
2: बिल्कुल, अभी तो इसका सीजन चल रहा है, 15 जून से, मतलब आज से लेकर जुलाई के 18-20 जुलाई तक इसका समय रहता है। तो इस बीच में रहर का बीज लगा देने से बारिश भी पाता है, धूप भी पाता है, जिससे उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा, तो इसमें क्या किसी भी प्रकार की किस्मों को या प्रभेदों को हम लगा सकते हैं कि कुछ चुनिंदा फसलों को ही लगाना चाहिए?
2: देखिए, अच्छा फसल पाने के लिए तो अच्छे क्वालिटी का बीज लगाना चाहिए। अच्छा क्वालिटी का लगाएंगे तो एक पौधे से अधिक मात्रा में फल मिलेगा, बीज ज़्यादा निकलेगा, तो उससे किसानों को ज्यादा लाभ होगा।
1: तो हमारे इस झारखंड के लिए या सिंहभूम या सरायकेला जिला के लिए ऐसे कौन सी किस्में हो सकती है?
2: हाँ है, जैसे T21, BR65, बिरसा अहर 21 और लक्ष्मी।
1: अच्छा, इन किस्मों को हम लगा सकते
2: हैं? लगा सकते हैं।
1: तो इसमें जो खाद वगैरह है क्या सब लगाना चाहिए?
2: खाद है DAP लगा सकते हैं, पोटास लगा सकते हैं और जैविक खाद डाल सकते हैं।
1: तो गोबर खादों की भी जरूरत पड़ेगी?
2: हाँ, खेत तैयार, बीज डालने से पहले खेत जब हम तैयार करते हैं तब हम गोबर खाद या कंपोस्ट ये सब डालते हैं।
1: अच्छा, तो ये यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जमीन की तैयारी कैसी करनी चाहिए उस साल?
2: इसको हम लोग इसका जो खेत है इसको खेत नहीं बोलते, हम लोग गोड़ा बोलते हैं। गोड़ा में इसका खेती होता है और उसको ट्रैक्टर से कम दो बार ट्रैक्टर चला के महीन थोड़ा जुताई होना चाहिए जिससे कि मिट्टी का ढेला ना रहे। और उसके बाद बीज को थोड़ा दूर दूर डालना चाहिए, ऐसे केवल छिड़काव कर देने से कभी कभी क्या होता है बीज एक जगह में दो चार बीज एक जगह गिर जाता है तो उससे बीज का सही इस्तेमाल नहीं होता है। और एक ही जगह दो चार पौधा उगेगा तो ठीक से ग्रो नहीं करेगा, कोई एक पौधा ठीक से बढ़ जाएगा बाकी दो है या तीन है तो वो छोटा ही रह जाएगा, ठीक से फलेगा फूलेगा नहीं। और हम लोग को तो चाहिए कि हर एक बीज उगे और हर एक बीज अच्छा से फल दे, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा दूरी में बीज को डालना चाहिए, जैसे एक एक हाथ का दूरी में एक एक बीज डालना चाहिए, क्योंकि पौधा छोटा में तो छोटा दिखता है लेकिन जब वो बढ़ता है जगह पाता है तो अच्छा से फैलता है और बढ़ता है।
1: अच्छा, इसमें और एक जानकारी दीजिए, बहुत सारे हमारे जो किसान है मेड़ों पे बहुत लगाते हैं या तालाब के जो मेड़ बने रहते हैं नए खुदाई का, वहाँ पर क्यों लगाते हैं? उसमें देखते हैं कि उत्पादन बहुत अच्छा होता है।
2: अच्छा होता है क्योंकि जैसे तालाब नया खुदा रहता है उसके ऊपर जो मिट्टी डाला रहता है जिसको हम लोग आड़ बोलते हैं, वो आड़ जो है मिट्टी अभी टाइट नहीं हुए रहता है तो उसके वजह से उसमें रहड़ का खेती बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको जड़ फैलने का और जड़ बनने का जगह बहुत मिलता है, इसलिए उसमें बहुत अच्छा से ग्रो करता है।
1: अच्छा, इसके साथ साथ तो जो मेड़ है खाली जैसे धान को हम लगाते हैं, हाँ, मेड़ों में भी लगा सकते हैं?
2: लगा सकते हैं, जिनका खेत मतलब बड़ा बड़ा मेड़ है तो उसको खाली क्यों छोड़ेंगे, बरसात का इतना पानी वेस्ट क्यों होने देंगे, तो मेड़ों में लगाना चाहिए जिससे कि पानी में ये खेत का पानी भी उसको अंदर ही अंदर मिलता है और वो बहुत अच्छा उस फसल देता है।
1: अच्छा, ये तो जानकारी थी आपने बीजों का, मेड़ों का, इसके साथ साथ हमें ये जानकारी दीजिए कि क्या हमें उन बीजों को लगाने से पहले बीजोपचार की जरूरत करना है या बीजोपचार हम क्यों करें, क्योंकि बहुत सारे किसान बीजोपचार नहीं करते हैं, बाजार से लेके आते हैं और तुरंत लगा देते हैं, पर परिणाम स्वरूप क्या होता है कहीं कहीं देखा गया कि उगना तो उग तो जाते हैं लेकिन तुरंत मर जाते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
2: देखिए, किसान के लिए बीज जो है ना बच्चों के समान होता है, उसका देखभाल उसको एक छोटे बच्चे की तरह करना पड़ता है, जिस प्रकार हम लोग छोटे बच्चों को टीका दिलाते हैं बीमारियों से बचाने के लिए, उन लोगों को हम लोग टीका दिलाते हैं, उसी प्रकार बीज को भी सारा बीज स्वस्थ हो और मिट्टी और पानी के संपर्क में आने से उसमें कोई फंगस ना लग जाए, उसमें कोई बीमारी ना लग जाए, इसीलिए उसका बीजोपचार करना पड़ता है जिससे कि जब वो बीज मिट्टी और पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें फंगस ना लगे, वो सड़ नहीं जाए और उसका जो जड़ जब निकलता है तो उसमें उसके जो छिलके में दवा का मात्रा रहता है वो उसके जड़ों को पोषण पहुंचाता है, दवा एनर्जी पहुंचाता है, ताकत पहुंचाता है, जिससे वो मिट्टी में जल्दी से सड़ते नहीं है उसके जड़।
1: अच्छा, तो लेकिन आप ये जो दलहनी फसलें में आप अरहर की जो बात कर रहे हैं, अरहर की खेती करनी ही क्यों चाहिए? क्योंकि और भी चीजें हैं हम उसमें लगा सकते हैं, दूसरे फलदार वृक्ष हो या कोई भी, लेकिन अरहर हम क्यों करें?
2: सबसे पहले तो अरहर में कोई मेहनत ही नहीं है, केवल खेत का तैयारी और बीज उपचार करने के बाद उसको जमीन में लगा देने पर उसके बाद उसमें कोई मेहनत ही नहीं लगता
1: है। इस प्रकार जो गोभी या टमाटर
2: उसमें बार बार खुरपी करना पड़ता है, दवा डालना पड़ता है और कीड़े लगने से बचाने के लिए करना पड़ता है, तो ये सब चीज रहर के साथ नहीं है। बस उसको अच्छा जगह खाद मिलते रहना चाहिए, जमीन को आप उस तरह तैयार कर दीजिए कि वो खाद देता रहे, और बस पानी मिलता रहना चाहिए। कभी कभी मौसम साथ नहीं देता है, ठीक तरह से बारिश नहीं हुआ तो पानी का थोड़ा सा व्यवस्था होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है। ये पानी का व्यवस्था तो उस आपातकाल में लगाना पड़ता है जब बारिश सही ढंग से नहीं हुआ, तो अगर बारिश हुआ तो उसमें पानी भी नहीं पटाना पड़ेगा।
1: तो क्या हम इस अरहर की यदि खेती करते हैं तो क्या ढलाननुमा खेतों में जहाँ पानी का जमा हो ना हो ऐसे जगह को खेती करना चाहिए कि जहाँ पर दोन जमीन हो वैसे जगह?
2: नहीं नहीं, ढलान में इसका खेती करना बहुत अच्छा रहता है, पानी तो चाहिए लेकिन पानी का जमाव नहीं चाहिए। रहर को पानी तो चाहिए, पानी का जमाव नहीं चाहिए। जहाँ पानी मिट्टी गीला रहता हो, चिपचिपा रहता हो, वैसा भी नहीं चाहिए। इसको बिल्कुल भुरभुरा पानी, मतलब मिट्टी रहना चाहिए, पानी पड़े और पानी
1: जाए।
2: हाँ, वैसा चाहिए। और ऊपर से क्या है इसमें जब फल लगता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फल लगता है, इसे किसानों को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके बाद इसमें और इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है। और बात यह है कि ये प्रोटीन से भरपूर अनाज है।
1: अच्छा,
2: इसके चलते इसका मार्केट में दाम बहुत ज़्यादा है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये जल्दी बिकेगा।
1: जिस प्रकार का हम गेहूँ या आटा की जो आप बात करते हैं, चना की जो बात करते हैं, और दालों में तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग अरहर अरहर उपयोग करते हैं।
2: हाँ, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो भी उनको हम लोग बोलते हैं दाल का पानी पिला लें, तब हम लोग चना दाल का पानी नहीं पिलाते हैं, अरहर का ही पानी पिलाते हैं ना।
1: अच्छा,
2: तो अरहर बच्चों को हमेशा अरहर का दाल देना चाहिए, बच्चों को नहीं सभी को अरहर का सेवन करते रहना चाहिए,
1: मतलब स्वास्थ्य के लिए।
2: स्वास्थ्य के लिए ये स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना लाभदायक है, ये आर्थिक लाभ के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, इसके साथ साथ ये जानकारी दीजिए कि वर्तमान समय में लोग जो खेती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो आज के समय में और इसको छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो किसान है इतना अच्छा फसल है, इसके बावजूद यहाँ हम बाहर से यदि आपका दलहनी फसलें या अरहर जैसे आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हम कैसे रोक सकते हैं इसको, अपने क्षेत्रों में कैसे हम उगा सकते हैं इसको?
2: देखिए, किसान के पास मार्केट नहीं है, हमारे क्षेत्र में दाल के लिए उनके पास मार्केट नहीं है, वो लोकल मार्केट में बेचते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता है, वो जितना उसको मिलना चाहिए उसका कीमत, सही कीमत नहीं मिलता है, और इसका प्रोसेसिंग यूनिट भी आसपास में नहीं होने के चलते इनको व्यवसायिक स्तर से खेती नहीं करते हैं, अपनी जरूरत भर का कर लेते हैं।
1: अर्थात यदि हम व्यवसायिक स्तर पर खेती करना चाहें तो इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट हो या गोदाम हो या इस प्रकार, या किसानों को और भी ऋण मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान हो सकता है केसीसी तो लेना चाहते हैं लेकिन वो व्यावसायिक स्तर पर खेती करना चाहेंगे हमारे किसान, तो उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना पड़ेगा, हो सकता है मशीन चाहिए। यदि ये सारी की सारी यदि उन्हें उपलब्ध कराई जाए तो क्या लगता है कि यहाँ खेती करेंगे?
2: हाँ, अगर इस तरह का सुविधा है अगर किसान को मिलेगा तो वो जरूर उसका खेती करेंगे, और उससे क्या होगा कि वो अपना अनाज का ये भी कर सकते हैं,
1: भंडारण
2: कर सकते हैं। अभी नहीं होने के चलते वो लोकल मार्केट में बेचते हैं, लोकल मार्केट में वो दाम नहीं मिलता उनको।
1: अच्छा, तो हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस दलहनी फसलों की खेती के बारे में?
2: हम श्रोताओं से यही आशा रखते हैं कि वे दलहन की खेती को विशेष ध्यान दें, और उसमें भी अगर रहर की खेती कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए कि रहर बहुत ज़्यादा प्रोटीशियस है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है।
1: संयोगिता जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और सरल शब्दों में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे अरहर की खेती के संबंध में, जानकारी दे रही थी संयोगिता विरुआ। इस जानकारी के बाद आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये संदेश।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
0: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। पुनः अगली बार मुलाकात होगी नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुरेश चंद्र सोए को विदा दीजिए। जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नामकुम, डोरंडा पथ और पुखड़िया मोड़ से गोविंदपुर मार्ग को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को एक रूप करने, झारनेट सेवा का विस्तार, पीएम आवास योजना से संबंधित एजी रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए जेएमएम विधायक दल की बैठक कल शाम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होगी। बैठक में चुनाव संबंधी रणनीति और पार्टी की आगे की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉक्टर नैयर नासिर सैयद नासिर हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने मुलाकात की। सेल की लौह अयस्क खदानों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को लेकर प्रबंधन और संयुक्त मजदूर यूनियनों के बीच विवाद गहरा गया है। गुआ में हुई वार्ता वे नतीजा रहा, जिसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। यूनियनों का कहना है कि मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए पुरानी उपस्थिति व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। जामताड़ा के उदलबनी स्थित वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण ने बुजुर्गों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, आधार कार्ड निर्माण किया गया। लोहरदगा समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने 25 जून तक अनुदानित बीजों का 100% वितरण सुनिश्चित करने, लंबित आवेदनों के शीघ्र सत्यापन तथा केसीसी लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हो अखड़ा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले आप सभी युवा दोस्तों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूँ रेखा। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम ही है कि मिशन वात्सल्य योजना चलाया जा रहा है हमारे ज़िले में। आप सभी जानते ही हैं कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। दोस्तों, यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है पर एक अस्थाई व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष या दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है। दोस्तों, तो आइए ज़रूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बातों को यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहरू ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱯᱟᱥ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱨᱮ, ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ, ᱟᱞᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
4: ᱵᱚᱨᱱᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱨᱟᱭ ᱠᱚ ᱜᱟᱸᱣ ᱵᱟᱲᱜᱮᱨᱟ ᱟᱲᱠᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱛᱚ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱠᱟᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱦᱮ ᱞᱚᱜ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱩ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮᱱᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮ ᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱥᱩᱱᱮ ᱯᱟᱨᱞᱤ ᱚᱦᱮ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱢᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱩᱢᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱚᱭ ᱦᱮᱱᱟᱭ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨ
5: ᱱᱟᱢ ᱦᱮ ᱨᱟᱱᱵᱟᱞᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱜᱟᱸᱣ ᱵᱟᱨᱮ ᱦᱚᱛᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱟᱭᱱᱮ ᱟᱢᱨᱮ ᱜᱷᱚᱨ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱫᱩᱠ ᱛᱮ ᱵᱟᱛ ᱦᱚᱭ ᱛᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱛ ᱦᱚᱭ ᱡᱟ ᱦᱮ
6: ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱲᱮᱢ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱢᱥᱚᱭ ᱟᱹᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱢᱥᱚᱭ ᱵᱷᱩᱨᱩᱯᱟ ᱥᱮᱱᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱚ ᱫᱩᱠᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹ ᱡᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱣᱟ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱠᱟ
7: ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱩᱢᱵᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱚᱢᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱠᱤᱛᱢᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱤᱱᱤᱢᱤ ᱩᱲᱤ ᱩᱲᱤ ᱱᱮ ᱵᱟᱜᱮ ᱟᱛᱚᱜ ᱠᱤᱧ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱯᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱞᱟᱹᱲᱟᱹᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱢ ᱜᱚᱡ ᱟᱸᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱦᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱮᱞ ᱢᱤᱭᱟ
8: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱮ ᱟᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱩᱨᱮᱱ ᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए 8700014242।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
11: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
12: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
13: RBI कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: इन संदेशों के बाद दोस्तों कार्यक्रम युवाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे हम बातें करते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष 15 जून 2026 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि की दवा खिलाई जा रही है। इस दिवस का लक्ष्य कृमि मुक्त बचपन, स्वस्थ एवं सशक्त पश्चिमी सिंहभूम है। आइए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर विस्तार से जानकारी के लिए आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम और उनसे बातें कर रहे हैं रमेश दास।
2: रमेश जी, सबसे पहले तो हमारी सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इनको मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि इन्होंने ये इतनी उपयोगी कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। हालांकि मैंने ये लगभग, मुझे 24 साल हुए जा रहे हैं इस डॉक्टरी पेशे में रहते हुए भी, और सरकारी जो चिकित्सा विभाग है इसमें अपनी सेवाएं देते हुए भी। इस दौरान बहुत सारे नए नए कार्यक्रम आए, कुछ बहुत पुराने कार्यक्रम हैं उनको बदला गया, और नए प्लानिंग के, नई योजना के साथ, नए नामों के साथ। मगर ये पिछले मुझे याद आता है बहुत दिनों के पहले का कार्यक्रम नहीं है, ये लगभग 7-8 साल ऐसे मुझे लग रहे हैं कि हो रहा है। हम लोग राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं, वो भी साल के 2 दिनों में ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जैसे तो 10 फरवरी है, और अब मैं आपको सभी आम जनता को भी बता दूं कि दूसरा एक दिन भी है 10 अगस्त को साल में हम लोग 2 दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। और ये पहली बात, ये मैं मुबारकबाद वाली। अब दूसरी बात, जो आपने जो पूछा कि कृमि है क्या, कृमि देखिए अक्सर जो हमारा जो शौच है ना, हमारी जो अंतड़ियाँ है ना, ये छोटे छोटे कीड़े जैसे चीज़ों से संक्रमित होता है। कीड़े जैसे संक्रमित, बस यूँ समझ लीजिए कीड़े ही हैं। कई लोग तो बोलचाल की भाषा में कीड़ा ही बोलते हैं, कीड़ा मारने का दवाई दीजिए। तो ये समझने वाली यही बात है कि पेट के कीड़े आप बोल सकते हैं, अंतड़ियों में जो कीड़े हैं उनको हम लोग कृमि बोलते हैं।
3: अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि ये शरीर के लिए कितना हानिकारक है?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये समझा जाए कि ये हानिकारक ही हानिकारक है। ये पहली बात तो है कि इनमें अंतड़ियों में संक्रमण होने से भूख बिल्कुल नहीं लगती है, उनका संक्रमण जितना ज़्यादा रहे उतना मनुष्य कमज़ोर होता चला जाता है, एक वो बात है। वो सही से पाचन क्रिया होती नहीं है, जिसकी वजह से अच्छी भूख नहीं लगती है, और तो और जो भी मनुष्य भोजन में ग्रहण करता है वो उसका अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारा जो प्रक्रिया को अंतड़ियों में डिस्टर्ब करता है, तो उसका अवशोषण में भी वो डिस्टर्ब करते हैं, और तमाम जो है ना, एक मनुष्य जो है वो अपने कंसंट्रेशन अच्छी तरह कर नहीं पाता, क्योंकि अंतड़ियाँ ही ठीक नहीं रह। अभी आप अनुमान लगाएं कि अगर आप सुबह में या शाम में अगर सही तरीके से शौच नहीं हुई हो तो कैसा महसूस करते हैं, बस यूँ समझ लीजिए ये कृमियों के आतंक से ऐसी हो सकती है संभावनाएं।
3: ये जो है कृमि जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे होता है ये?
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताऊँ कि ये जो हम सभी जो एक्चुअली जो ये जो शौच हम लोग मतलब करते हैं हम लोग, तो शौच में ही ये कीटाणु रहता है, ये कीड़ा रहता है। और इसके बाद अगर मान लिया हम लोग शौच करने के बाद ढंग से हम लोगों ने हाथ नहीं धोया, साबुन से नहीं हाथ धोया धोने के बाद, तो हमारे नाखूनों में ये इन इन कृमियों के अंडे जो है ना, ये कृमियों के अंडे फंस जाते हैं, और फिर वो जब हम लोग भोजन ग्रहण करने लगते हैं फिर से हमारा जो भोजन हो दूषित हो जाता है कृमियों के अंडों के साथ। उसके बाद फिर से वो हम लोग दूषित खाना भोजन ग्रहण करते हैं तो फिर से हमारा जो अंतरियों में फिर कृमियों का की जो संख्या है ना और बढ़ जाती है। और यत्र तत्र हम लोग अगर मान लिया शौच करते हैं तो आप सभी जानते हैं मक्खियाँ, यहाँ तक कि मतलब पक्षियाँ हैं, पक्षी सब भी इन चीज़ों को ले करके अपने चोंच सब में ले करके फिर अगर मान लिया भोजन भोज्य पदार्थों में ये बैठ जाते हैं तो ये फिर वहाँ से जो शौच से उठाए हुए अंडे को वहाँ छोड़ देते हैं। जिस तरह से वो जो जो कुछ भी खाना ही क्यों, कुछ भी खाद्य पदार्थ दूषित होने की संभावना, फिर मनुष्य जब फिर उसको ग्रहण करता

0: तो फिर उसके उन अंडों का जो जो जो वयस्क जो कृमि है फिर अंतड़ियों किसी के अंतड़ियों में फिर पनपते हैं और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है।
1: अच्छा एक बात हम जानना चाहेंगे कि खासकर हम देखते हैं या सुनते भी हैं कि छोटे बच्चों में ज़्यादा ये देखा जाता है, तो क्या कोई उम्र सीमा भी है कि इतने से इतने बच्चों?
0: नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में ही ज़्यादा देखा जाता है। हाँ ये बात हो सकती है कि छोटे बच्चों में उतनी मतलब हाइजीन की समझ नहीं होती, साफ सफाई की उतनी समझ नहीं होती है, तो उनमें हो सकता है कि ज़्यादा आपको देखने को मिले, लेकिन बड़े भी संक्रमित ही होते हैं। ऐसा कोई एज ऐसा एज इंसिडेंस नहीं दिखाया, नहीं अब तक समझा गया है कि बच्चों में ज़्यादा या बड़ों में कम या ऐसी कुछ बात नहीं।
1: तो इससे हम बचाव कैसे?
0: देखिए पहली बात तो है कि जो अभी जो प्राथमिकता मैं जब राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है तो प्राथमिकता मैं जरूर चाहूँगा कि भाई हम लोग सभी लोग एक वर्ष से अधिक के सारे लोग, दो तीन लोगों को छोड़ करके दो तीन ग्रुप जो बहुत बीमार हैं और कुछ कुछ जो जिनमें मनाही हैं उनको छोड़ करके अधिकतर लोगों को, मुझे लगता है कि 95% लोगों को ये ग्रहण करना है। ये ग्रहण करें तो पहली बात तो है कि इस साइकिल को, इस चक्र को हम लोग अंडा से कृमि, फिर कृमि से अंडे, फिर वो अंडे फिर से दूसरे शरीर में, ये इस चक्र को हम लोग कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं। एक दूसरी बात साफ सफाई, जैसे हम लोग अभी के बहुत जोर दिए हुए कि भोजन करने से पहले या शौच के बाद अच्छी तरह से हाथ साबुन से या जिसके भी चीज़ों से साफ सफाई बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। तीसरी सभी सरकारों का एक बहुत मिला जुला प्रयास रहा है, सब कोई सम्यक प्रयास कर रहे हैं कि भाई खुले में शौच की जो हमारा जो आदत है लोगों में इनको तोड़ी जाए या इसको आदत को बंद किया जाए और तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि खुले में शौच की जो घटनाएं हैं ये ना हो, शौचालयों को बढ़ावा दिया जाए। ये सब चंद चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपने जीवन में अपना करके हम इस तरह की जो कृमि संबंधी बीमारियां हैं इनसे संभावनाओं से हम लोग दूर हो सकते हैं।
1: क्या खान पान में भी कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए इस पर?
0: खान पान देखिए जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनका भी बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो हमारे जो खाद्य पदार्थ तो है वो जमीन से ही आते हैं, हम सभी अब जान रहे हैं, तो उनका भी मतलब पकाने से पहले उनकी अच्छी तरह से मैंने निसंक्रमण कर दिया जाना चाहिए। जरूरी होता है कभी कभी कुन कुन कुछ कुछ भोज्य पदार्थों को गर्म हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा सोक करके भिगा करके उसके बाद पकाया जाए, और जो पकाने के जो तरीके हैं उसमें भी अधपका नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पकाया हुआ होना चाहिए। हालांकि ये अंडे और जो है ना बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जहाँ भी गर्मी होती है वो पकाने की प्रक्रिया होती है तो उसमें नष्ट हो जाते हैं, फिर भी कोशिश करना चाहिए कि ये जो भी भोज पदार्थ हैं हम लोग साफ सफाई करके अच्छी तरह से उसको और अच्छी तरह से पका लें।
1: क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके बचाव के लिए योजनाएं चल रही है?
0: रमेश जी सबसे पहले तो ये मैं जैसे बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हम लोग अब साल के दो बार हम लोग मना रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बीच बीच में नियमित अंतराल पे हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि साफ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और जो हाथ धोने की करने की जो तरीके हैं उनको भी हम लोग यहाँ तक कि जो हैंड वॉशिंग जो टेक्निक्स है टेक्निक्स तक लोगों को बताते हैं, और जितना भी खुले में शौच ना जाने के लिए भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि अभी अधिकतर गाँव में भी अब शौचालयों का निर्माण हो गया है, तो इस तरह से ही हम लोग इन सब चीज़ों को हम लोग केंद्रित करके अपनी योजनाओं को और जो कृमि मुक्ति जो भारत देश है उसके लिए हम लोग जो सपना देख रहे हैं इस सपने को पूरा कर सकते हैं।
1: आप एक चिकित्सक होने के नाते आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सलाह देंगे, क्या अपील करेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: मैं अपील यही करूंगा सरकार और विभागें जो है ना ये हमारी आम जनता का भरपूर ख्याल रखने का कोशिश करती है, जो भी उसके पास जो सीमित संसाधन है, कोशिश किया गया है कि हर चीज़ों को हर बीमारियों को जो भी जो लोक बीमारी हम लोग बोलते हैं, पब्लिक डिजीजेज, इसमें हम लोग ऐसे जो बहुत सारे जो ऐसे व्यक्तिगत बीमारियां हैं, किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी का किडनी डैमेज हो रहा है, किसी का हृदय संबंधी बीमारी है, तो वो अलग है। लेकिन जो लोक जो बीमारियां हैं इसके लिए बहुत मतलब जो सामूहिक एक प्रयास जो होता है और एक सामूहिक एक दवाओं का मतलब सेवन हम लोग, जैसे वो कृमि मुक्ति दिवस, जैसे अपने MDA भातीफाव के लिए भी हम लोग एक ही दिन में दवाई, जैसे आप लोग याद करते होंगे पल्स पोलियो, एक ही दिन में सारे बच्चों को पोलियो की टीका देते थे। तो ऐसे ही जब एक प्रयास होता है कि जब सारे लोग एक साथ हम लोग कृमि की गोलियां खाएं, तो एक सभी लोगों का एक योगदान रहेगा कि हम लोग इस तरह से अपने देश को, अपने राज्य को कृमि मुक्त बना सकते हैं। तो मेरी ये अपील होगी कि जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मियाँ जो और हमारे जो पदाधिकारीगण जो भी इन सारे कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उनको सहयोग किया जाए और हमारे जो योजनाएं हैं सरकार की, इनमें अपने आप को भी अपनी भी भागीदारी निभाएं। और मैं जिन तक ये बात पहुंचा रहा हूं, जो इस बात को जान रहे हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं, उनकी भी ये उत्तरदायित्व तो बनती है कि वो आगे फिर इन सभी बातों को सारे उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद ये बातें नहीं सुन पा रहे हैं। उनकी भी कोशिश यही होनी चाहिए। अधिकतर लोग अगर मान लिया इस चीज़ों का सेवन करते हैं तो एक बहुत अजीब सा, अजीब नहीं है हमारे मेडिकल के भाषा में, अजीब नहीं है, तो एक अजीब सा घटनाक्रम होगा कि अगर हम लोग एक साथ अल्बेंडाजोल की गोली खाएंगे तो जो अल्बेंडाजोल का जो दवाई है वो किसी अगले दिन, अगर हम लोग ये समझें तो अगले दिन माहौल में, वातावरण में, जहाँ भी पानी में हो, कहीं भी, वो कृमि की अंडे कम, कृमि कम, लेकिन अल्बेंडाजोल की कि जो गोली का जो केमिकल है वो पूरे वातावरण में घूमेगा, जो इस चक्र को तोड़ने में और ज़्यादा कारगर होगा।
1: तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, हम मुझे भी ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जोहार।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम। और इसी भेंट वार्ता के साथ ही अब समय हो चला है आप सबों से विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त रेखा को दीजिए विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान किया गया एक रूप। झारनेट सेवा के विस्तार का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का किया शुभारंभ। कहा ग्रामीण जनजातीय और वंचित समुदायों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज की मुख्यमंत्री के साथ मंथन। लोजपा ने नाथवानी की जीत का जताया भरोसा। विकसित भारत युवा संसद 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। झारखंड की

0: तीन प्रतिभागी राष्ट्रीय मंच पर करेंगी राज्य का प्रतिनिधित्व। और रांची में 17 जून से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का होगा आगाज। भारत समेत 5 देशों की टीमें लेंगी भाग, 150 खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नामकुम डोरंडा पथ और पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर मार्ग को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को एक रूप करने, झारनेट सेवा के विस्तार, पीएम आवास योजना से संबंधित एजी रिपोर्ट को स्वीकृति देने और गोड्डा समाहरणालय में अवैध रूप से कार्यरत 5 लोगों को बर्खास्त करने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।
1: इनमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 162,82,22,100 रुपए मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग से श्री मुरारी भगत सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, इनके द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरुद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने के संबंध में।
0: रांची में आयोजित मिड टेक इनोवेशन डे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का शुभारंभ किया। भारतीय विकास ट्रस्ट और PHIA फाउंडेशन की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों के परीक्षण और उपयोग को बढ़ावा देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।
2: बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, जहां कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते हो। हम ऐसे भी चीजों को इनोवेट करें कि हमें पहले ही पता चल जाए कि उसको क्या समस्या है। आज के दिन में तो मस्तिष्क को समझने वाले भी मशीनें बन चुकी हैं। आज नए इनोवेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर रिजल्ट पाने में सक्षम होंगे। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हेल्थ मैपिंग हो यहाँ पर।
0: 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए JMM विधायक दल की बैठक कल शाम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होगी। बैठक में चुनाव संबंधी रणनीति और पार्टी की आगे की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी KRaju, सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने मुलाकात की। लोक जनशक्ति पार्टी आर के नेता बीरेंद्र प्रधान ने कहा है कि पार्टी विधायक जनार्दन पासवान राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने दावा किया कि नाथवानी की जीत विकास की राजनीति को मजबूती देगी। सेल की लौह अयस्क खदानों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को लेकर प्रबंधन और संयुक्त मजदूर यूनियनों के बीच विवाद गहरा गया है। गुआ में हुई वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। यूनियनों का कहना है कि मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए पुरानी उपस्थिति व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में कथित त्रुटियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता मैपिंग का स्तर कम है। पार्टी ने त्रुटियों के सुधार के लिए विशेष विंडो खोलने की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
4: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आज से 3 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत ने कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और संसदीय कार्यप्रणाली से जोड़ना है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड से चतरा की राजश्री वीरा, रांची की मायरा कुमारी और रामगढ़ की निधि कुमारी राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। खूंटी जिले के एरेंडा गांव के किसान राम सिंह महतो ने बिना सरकारी सहायता के पोल्ट्री फार्म स्थापित कर सफलता की मिसाल पेश की है। पत्नी कीर्ति देवी के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से ऋण लेकर शुरू किए गए इस उद्यम में आज 5,000 से अधिक मुर्गियां हैं। आधुनिक तकनीक और कड़ी मेहनत के बल पर वे लखपति किसान बन चुके हैं। किसान राम सिंह ने बताया कि पोल्ट्री फार्म से बड़ी आमदनी के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
5: इसमें लगभग हम लोग को 2 पोल्ट्री फार्म बनाने में हम लोग को लगभग 15-17 लाख रुपए लग गया है। आमदनी इसमें 80-85 तक पहुंच सकता है, अगर ज्यादा मेहनत नहीं मरने से 1 तक पहुंच सकता है। अभी तो हम लोग उम्मीद रखे हैं 80 तक, गर्मी की वजह से।
0: पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र में पूर्व माओवादी जगनारायण यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम सुहाना हो गया है। पिछले 24 घंटों में रांची के कांके क्षेत्र में सर्वाधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज गर्जन की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 17 और 18 जून को दूसरी दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी। झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ के चेयरमैन डॉ. राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 150 खिलाड़ी और टीम सदस्य भाग लेंगे।
6: ये टूर्नामेंट खेलगांव में आयोजित की जाएगी, हरिवंश टाना भगत, और जो अलग अलग कंट्री से खिलाड़ी 4 देशों से आ रहे हैं, एक तो भारत का ही टीम है। ये 17 और 18 जून को खेल का शुभारंभ होगा, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका की टीमें भाग लेगी।
0: चक्रधरपुर की उभरती शतरंज खिलाड़ी अदिति ने रांची में आयोजित 25वीं झारखंड स्टेट चेस चैंपियनशिप में अंडर 13 बालिका वर्ग का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ उनका चयन आगामी राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान किया गया एक रूप। झारनेट सेवा के विस्तार का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण, जनजातीय और वंचित समुदायों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज किया मुख्यमंत्री के साथ मंथन। लोजपा ने नाथवानी की जीत का जताया भरोसा। विकसित भारत युवा संसद 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। झारखंड की 3 प्रतिभागी राष्ट्रीय मंच पर करेंगी राज्य का प्रतिनिधित्व। और रांची में 17 जून से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का होगा आगाज। भारत समेत 5 देशों की टीमें लेंगी भाग। 150 खिलाड़ी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे
7: में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
8: धन्यवाद।
7: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
8: देखिए मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
7: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
8: देखिए फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मूड है उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे, ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है इसको हम पूरा करें।
7: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
8: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में, राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की

0: एक जैसा नहीं है। जहाँ चीज़ें खास करके ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। ज़मीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर। तो ज़मीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े। RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीम राणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझें इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा साथ कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2,00,00,000 आउटर एजेंसी

0: से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं। प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1.5 करोड़ लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1.5 करोड़ लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक, कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर ये पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम 0 बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही 0 आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो 0 है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ,

0: अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया। मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit, the private sector has a trust deficit, non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society, but more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, you know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents the next wave or the next building on what has happened in the last 10 years, the

अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं ये पहला खत जो हमें भेजा है अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू, गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी और संतोष आनंद, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, सरायकेला पारापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती डोबरो, साजन सिद्धेश्वर पारापुर, शिवाजी डोबरू, मुकेश कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बो, सोना बाबू और एफएम शिवा मुंडरी, दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी। आप सबों की पसंद पर सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की

और अब सुनवाते हैं फिल्म संघर्ष का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू की, बोल समीर के। पसंद आप सबों की है ग्राम ओघड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो, कैलाश और परिवार के सभी लोग। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोहिनी महतो, मनोरमा और दिनबंधु महतो। कुचाई बिदरी से के पी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी मुन्ना और सन्नी सोए। बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, श्यामदेव नायक, सुदर्शन प्रमाणिक। ग्राम गेलिया लोहर से बनमाली बेसरा, कोमल बेसरा, बासंती, सिद्ध कुमारी और अन्नू और पूजा। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। आप सबों की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म संघर्ष का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म ससुराल का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहा है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी, माहौलिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, संतोषी दीपक संतोष, राहुल अन्नू तन्नु भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो और गीतेश महतो, छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार। अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कांस लेकर, दिनकर विमल, विशाखा कांस लेकर।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं और अब समय है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनी गंधा का। कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला फरमाइशी गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म है 2 आँखें 12 हाथ। इस गीत के फरमाइश करता है गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विकी गोप, राजू गोप, विनोद गोप, सरस्वती देवी, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, उमा कुमारी और भारती। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर, परी और लाडला टुक टुक। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी और डीएच बच्चन। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, साइना, विशाल, सुपरिया अनमोल, धर्मपाल, महावीर और रमेश मिगलानी।

और अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू के स्वरों में फिल्म सलमा पे दिल आ गया का ये फरमाइशी गीत। इस गीत को सुनना चाहा है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन सरफुद्दीन, कुमारी वली, कुमारी डब्लू, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रज्जक, भाटापारा से देवेंद्र कुमार साहू, लकी हर्षित, सुमित्रा साहू, तालुका ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तरवी, रीना तरवी, सनी बाबू, रोजू बाई तरवी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तरवी, आरिश अरसलान, यूनुस तरवी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से मुशर्रफ खां तरवी, जरीना तरवी, मुबारक तरवी, परवेज तरवी, बिटिया रोजमिन तरवी, तैमूर तरवी और समस्त तरवी परिवार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में फिल्म साथी का ये गीत। इस गीत के फरमाइश करता थे भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, रेखा देवी, बंसीलाल, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक, ग्राम परजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, आराध्या चंसौलिया। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तब में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल जा

0: ହେତୁ ଆଉ କହ କହ ମାନେ ଆହେ ଲୋକ ଆଉ କହ ଜିନ୍ଦା ହେନ ମାନେ ଜିନ୍ଦା ହେ କୋଇ କୋଇ ନାମରେ ଶୁଣି ପାରିଲି ଓହେ ଚାଲିତ ଏକଦମ ହାମରେ ପୁରା ଏକଦମ ଏଖନ ତ ତୁମେ ଠିକ ହୁଏ ହେଇ ନାହିଁ ତ ପୁରା ଏକଦମ ପରିବା
1: ନାମ ହେ ରଙ୍ଗବାଲା ଦେବୀ ଗାଁ ବାର ହତୁ ତା ଘର ଆଉନି ଆମରେ ଘରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବାତ ହେତ ଏଖନ ବାତ ହେଇ ଯାହେ
2: ତୁମ ବଡ଼ ମିଶିଂ କାମ ସହେ ଅନିତା ତାମସଏ ଭୁରୁପା ଆସିନ କନା ଏସୁ ଦୁକୁରେ ମିନାଞ୍ଞ ଯାପା ମେରେ ତପା ମେରେ ଓଆ ବିଟାନିକା
3: ଆଞ୍ଞା ମତୁ ଦ ବୁମ୍ବାଇ କୋଡା ପାଟନ ତୁମ ଗୁଣ୍ଡେ କୋଡା ଆଞ୍ଞା ହନ ଦ କୋଦମରି କୋଡା ର ପାଟନ ପାଟନ ତୁମ କେତମାଇ କୋଡା ମୁନି ମେ ପୁରି ଉଡି ନ ବାଗିଆ ତ କି ମୁନ ନୁନା ଆସି ଆସି କଲୋ ପୁଲିସ କଲୋ ଏମି ଲଡାଇ ଚଲାଓ ତମ ଦୁରୁରମ ଗୋୟାଣ୍ଡ ବ ଯାଇ ତେରେ କାକା ଗୁ ହୋ ଉନି ବକ କୋ କାକୋ ମେ ମିଆ
4: ଲିଙ୍ଗ ମୁନି ସୁରେନ ତେତେ ଆପିଲେ ତନା ଲିଙ୍ଗ ସି ଯା ହୁରାରେ ମିନାଇ ରୋ ଜିତା ହୁରାରେ ମିନାଇ ରୋ ତୋ ବୁଗିମ ହୁରାତେ ସେସେନ କାଏ ଉଆଗେ ବିଟା ହୁରାନ କା ଆଲେ ଆୟା ନୁ ତୁମ ତେ ନମ ଆପିଲେ ତନା
5: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम रजनीगंधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म ईश्वर का ये गीत बोल अनजान के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के फरमाइश करता है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, चाईबासा अमला टोला से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद, दंतरेंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, बाबा कोटी उफरा पाटन से प्रेमू साहू, यमुना साहू, भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसीपति की मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, अमृत कुमार। आप सबों की फरमाइश पर सुनवाते हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म ईश्वर का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म उपकार का ये गीत, आवाज़ महेंद्र कपूर और साथियों की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्तमान सरकार
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी M. पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
4: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 1000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया।

0: एलएनजी कैरियर दिशा
1: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच

0: मानी सुना शुरू की जा रही हैं। मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक नुमाया संगे मील तय करते हुए आज उत्तर प्रदेश के जिला जेवर में नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों का आगाज हो गया। आज सुबह लखनऊ से आने वाली इफ्तिताही परवाज के साथ इंडिगो नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पहुंचने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये हवाई अड्डा दिल्ली के वसी इलाके और मगरबी उत्तर प्रदेश को मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ता है। यह आलमी मेयार का हवाई अड्डा मुसाफिरों को जदीद और जामे तजारती सहूलियात और खिदमात फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इब्तदाई मरहले में यहां से घरेलू परवाजें चलाई जाएंगी, नीज आइंदा महीनों में बैनुल अक्वामी परवाजें चलाए जाने का भी मनसूबा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा कि पहले मरहले में यह हवाई अड्डा 1,20,00,000 मुसाफिरों को हवाई सफर की सहूलियात फराहम करेगा, जो कि हवाई अड्डा मुकम्मल होने के बाद तवक्को है कि 7 करोड़ मुसाफिर सालाना यहां से सफर कर सकेंगे। आज पहली परवाज के जरिए सफर करने वाली एक मुसाफिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए हवाई अड्डे के आगाज पर खुशी का इजहार किया। मुस्तकबिल में मुसाफिरों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दस्तियाब होंगी, जो बजट और सफरी खिदमात को पूरा करेंगी। इस हवाई अड्डे पर फजाई माल बर्दारी की खसूसी सहूलत भी दस्तियाब होगी, जो इब्तदाई तौर पर 2,00,000 मेट्रिक टन सालाना होगी, जिसे बाद में 15,00,000 मेट्रिक टन तक बढ़ाने का मंसूबा है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: अमरीका और ईरान की जानिब से मगरबी एशिया जंग को खत्म करने के लिए एक माहदे के ऐलान करने के कुछ घंटों बाद ही इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज सरहदों पर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगी। इसराइल की सलामती की पॉलिसी की बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि आईडीएफ इसराइली शहरियों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए लबनान, शाम और गजा में सलामती जोन्स में गैर मुयना मुद्दत के लिए तैनात रहेगी। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल ने फौजों की वापसी के लिए बैनुल अक्वामी वक्त की मुद्दत पर अमल करने के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इनकार से बराह रास्त मुत्तला किया। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमत का खैर मकदम किया है। आबनाए हुरमुस एक तंग बहरी रास्ता है, जिसे आलमी तेल सप्लाई के 5वें हिस्से के नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यह उम्मीद करता है कि इस मफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमद रफ्त हो सकेगी। अमन के इस माहदे पर 19 हुकूमत ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां आला सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, उनके पास खाम तेल के वाफिर जखायर मौजूद हैं और पेट्रोल और डीजल के खातिर ख्वाह जखायर को बरकरार रखे हुए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरमा सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बारे में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए ये इंकशाफ किया। फर्टिलाइजर के महकमे में ज्वाइंट सेक्रेटरी वंदना प्रियाशी ने कहा कि मुल्क में फर्टिलाइजर्स का जखीरा मामूल के मुताबिक है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा कार्गो दिशा बहिफाजत आबनाए हुरमुस पार कर गया है। तवक्को है कि जुमेरात को ये दहेज बंदरगाह गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंच जाएगा। रेलवे की वजारत ने शिमाली रेलवे की अंबाला डिवीजन के लिए 201 करोड़ रुपए मालियत के कवच प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कवच मुल्क में तैयार करदा खुदकार रेल तहफुजाती निजाम है, जिसे ऑपरेशनल सेफ्टी को मजीद बेहतर बनाने के लिए वजा किया गया है। रेलवे की वजारत ने गुजरात में अहमदाबाद डिवीजन के लिए भी 140 करोड़ रुपए के कवच प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अहमदाबाद के साइबर जराइम से मुतालिक महकमे ने नीट इम्तिहान में हुई धोखादही में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्जाम में राजस्थान और बिहार से 3 अफराद को हिरासत में लिया है। अहमदाबाद के साइबर जराइम के महकमे में ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस शरद सिंघल ने मीडिया को बताया कि राजस्थान से हिरासत में लिए गए 2 मुलजिमान जाली सोशल मीडिया चैनल चला रहे थे, जिनमें वो नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान के पर्चे बेचने का दावा कर रहे थे। कैडेट कोर एनसीसी के नए रियासती डायरेक्टोरेट्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। इस फैसले से मुल्क में एनसीसी रियासती डायरेक्टोरेट्स की कुल तादाद बढ़कर 19 हो गई है। वजारत ने वाजे किया है कि नए डायरेक्टोरेट्स की तश्कील से मरकजी सतह पर मुनाकिद होने वाले बाकायदा कैंप्स, जैसे यौम जमहूरिया की परेड का कैंप और ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में शिरकत करने वाले कैडेट्स की तादाद में इजाफा होगा। کے حصص بازار کے اہم اشاریے آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 سے کراری شکست دی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. 52 G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک تیار طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز ہوا.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अपने आपको, थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जब भी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
0: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहाँ तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा। गले में भी लाभ होगा, जैसे मौसम के बदलते हुए उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व, ये सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो, किसी हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
1: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो आप प्रश्न है उसमें ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज़्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां हैं।
2: हाँ, हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका।
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है
0: जी, बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
0: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
0: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
1: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, पर रात में ब्रश करके सोना है
0: जी,
1: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
0: वो
1: उसको हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे
6: जी। धन्यवाद। मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या आंखें कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
2: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
0: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
0: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
7: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
7: दोनों नमस्कार है
0: जी। सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
2: जी हाँ, बिल्कुल, प्राणायाम है
0: जी।
2: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है, और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
8: मुकेश कुमार जी,
0: जी क्या सवाल है आपका?
8: कुमार जी नमस्ते।
0: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
8: डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
2: नमस्कार नमस्कार।
8: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
0: जी,
8: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
0: जी।
1: जी,
8: और योगा करने से वो ये होगा
1: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें, पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफ़ी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है, क्या दोनों को करना आवश्यक है?
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
0: जी,
2: प्राणायाम और आसन
0: जी।
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है, जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं, तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
0: जी।
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
0: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
9: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर
0: जी, बताइए
9: सर। जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए। दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मैडम?
2: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, मैं रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि स्वास्थ्य, सॉरी कुछ है ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
0: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
2: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
0: जी।
2: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयाँ आ गई हैं। और जहाँ तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातःकाल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
0: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से।
10: नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार। पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
0: प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
10: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
1: धन्यवाद रशीद जी, बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो, शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी डाल लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज़्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले भी बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं, काजल की तरह आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
0: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम दो मिनट या पांच मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
2: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
0: जी,
2: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो है ध्यान का, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट,
0: बिल्कुल करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
1: देखिए डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
0: जी।
1: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
0: जी।
1: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज़ भी सुनाई ना दे, आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना बहुत तेज करने लग जाते हैं, उनका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है।
0: जी जी जी।
1: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
0: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
11: सर हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
0: बहुत अच्छा सवाल,
2: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम हैं जो उनको करने हैं और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
1: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
0: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
12: नमस्कार।
0: नमस्कार।
12: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: धन्यवाद।
12: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
2: घर घर की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए, जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूँगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है उन पर नियंत्रण करना।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे ज़रूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना ज़रूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
0: जी,
1: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
0: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी।
13: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक से हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग एक तो बहुत गणित कठिन है और जो है ये दंड बैठक ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
1: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत बात है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज़्यादा लाभ देगा।
0: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
14: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गया बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल अलग रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या? या फिर या 10 दिन या एक महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
2: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके उस संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
0: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
2: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
0: कमल जी बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
1: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है जो इस विशेष नस बोलते हैं उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है ब्राह्मणी प्राणायाम के अलावा। बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें। और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज़्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
0: और श्रोताओं घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब समय है गज़लों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं ये गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में ये गज़ल। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं गज़लों का कार्यक्रम महफिल, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम महफिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये गज़ल।

श्रोताओं, जगजीत सिंह के स्वर में गाए इसी गजल के साथ ही आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में सुनवाते हैं ये पहला सुर किशोर कुमार का। फिल्म है गोलमाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म दोस्ताना का ये गीत, बोल आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत।

0: प्यारेलाल का आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म दो रास्ते का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों के स्वरों में फिल्म सफ़र का ये गीत, बोलिन दियोर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं यशोदास को फिल्म सावन को आने दो।

0: दास के स्वर में गाए इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम

0: In the FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Carabao underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।